नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है श्रोताओं, शक संवत 1948 के आश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026, प्रातः के 5:58 हुए हैं। हम अपना आज का प्रसारण आरंभ कर रहे हैं।

हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। सुबह की 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत

0: भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अब हमारा प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से रिले होगा। सबसे पहले आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवार।

सुनिए आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवाद। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। इस समय श्रोताओं 6:30 हुए हैं, तो आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में 6:35 पर हमारे मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे श्री रामचरित मानस गान। फिर 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता। आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं एक श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज इसकी 10वीं कड़ी होगी। कलाकार हैं गायक पंडित गोकुल उत्सव महाराज। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुबह 7 बजे और हम ही रही प्यार के सुन पाएंगे आप 7:30 पर। आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे प्रातः 8 बजे, प्रातः 10 बजे, दोपहर 12 बजे। इसके अलावा श्रोताओं आकाशवाणी से हम हिंदी में समाचार आपके लिए रिले करेंगे शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी। हमारी सुबह की सभा में 8:15 पर और फिर दोपहर 2 बजे विविध भारती की मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे आज कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। कुछ नए फिल्मी गीत सुना करते हैं आप चित्रलोक कार्यक्रम में। ये आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर भी। हमारे केंद्र से आप सुना करते हैं कार्यक्रम आज का अखबार सुबह 9:30 पर। सुबह 10:05 पर आज होगा प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हमारा आज का विषय है बहुत जरूरी है सड़क पर संयम और सावधानी। एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको हमारी बेड़ियां सुबह 11 बजे।

11:15 पर आज सुन सकते हैं आप प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। मुंबई केंद्र से कार्यक्रम यादों की महफिल, जो फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, सुनवाया जाएगा 12:05 पर। प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर। प्रादेशिक पंजाबी समाचार जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए पहले दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। कार्यक्रम सुलीला सफ़र दोपहर 1:30 पर मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। वहीं से सदाबहार नगमे सुना करते हैं आप दोपहर 2:30 पर। फिर वहीं से श्रोताओं दोपहर 3:00 होगा कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा कार्यक्रम में आज सुनवाई जाएगी नासेरा शर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी दो दीवाने शहर में। हमारे यहाँ से प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनवाया जाएगा आपको शाम 5:30 पर।

हमारी शाम की सभा में श्रोताओं अमृत बाणी सुनेंगे 6:30 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा 7:00। हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार भी आप सुन सकते हैं। समय है 7:45 और 10:30। कुछ पंजाबी गीत सुनिएगा 7:47 पर। पंजाबी गीतों का ही कार्यक्रम सुर सांझ सुन सकते हैं आप 10:32 पर। रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम में आज डॉक्टर शमसुद्दीन की लिखी नाटिका सुनवाई जाएगी मान की मृत्यु। आज के फनकार कार्यक्रम होगा 9:30 पर। आज के फनकार हैं गायक SP बाला सुब्रमण्यम और श्रोताओं उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे 10:00। प्रस्तुत करेंगी नेहा शर्मा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। इस समय 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्रीराम चरित मानस गान।

आसुरी माया और भांति भांति के शस्त्रों से अकेले मेघनाद ने युद्ध भूमि में प्रलय सा मचा दिया है। रावण के अन्य योद्धा भी युद्ध में आ डटे हैं। इधर अपने दल बल समेत विशाल भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल और रक्ताप नेत्रों वाली लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला है। भयानक मारकाट मची है, जहां तहां रुंड मुंड उड़ रहे हैं। भयानक निनाद से वातावरण प्रकंपित है। रक्त से गड्ढे भर गए हैं, जिन पर जमी धूल ऐसी दिखाई देती है जैसे अंगारों पर राख की परत बैठ गई हो। ऐसा लगता है कि कोई किसी को जीत नहीं सकता। तभी लक्ष्मण के वाणों से मेघनाथ का रथ सारथी समेत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। प्राणों पर संकट आया देख मेघनाथ शक्तिवाण चलाता है, जिसके छाती में लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर लुढ़क जाते हैं। योद्धाओं की सहायता से मेघनाथ उन्हें उठा ले जाना चाहता है, किंतु धरती का भार अपने फन पर वहन करने वाले शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को भला कौन उठा सकता है। अनेक योद्धा लक्ष्मण का अचेत पड़ा शरीर उठा लेना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने में असफल होकर लज्जित हो वापस चले जाते हैं। संध्या हो आई, सभी वीर अपने अपने शिविरों में लौट आए, किंतु लक्ष्मण कहाँ हैं? श्री राम का ये प्रश्न मुखरित भी नहीं हुआ था कि हनुमान उन्हें ले आए। अनुज का ये हाल देखकर श्री

0: ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। आज आपने सुना भाग 322।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस विषय पर जानकारी और गायन के उदाहरण जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने प्रस्तुत किए हैं।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। छंद शास्त्र के अनुसार तराने में मगण, तगण, नगण आदि का प्रयोग है। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में समझा जा सकता है, कहा नहीं जाता। जब समझ में कमी होती है तो कहा हुआ समझ में आता है, और अनुभव होने पर अनकहा ज़्यादा समझ में आता है। वही बात तराने पर लागू होती है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मनुष्य की ज्ञान एवं श्रवण शक्ति से परे हैं, जिसे एबिएंट नॉइज कहते हैं। इसे सुनकर मच्छर भाग जाते हैं, किंतु इस आवाज़ को इंसान नहीं सुन पाता। पशु पक्षी जिस बात को समझते हैं, एहसास करते हैं, वह मनुष्य की ज्ञान शक्ति से परे है। जहाँ मनुष्य की समझ नाकाम हुई, वहाँ पशु पक्षियों की समझ को, उनकी ध्वनि को एक स्थान मिल गया है। जैसे गर्दभ से गंधार, कोकिल से पंचम, हाथी से निषाद। देखा जाए तो श्री कृष्ण की बंसी में भी स्वर का आकर्षण था, शब्द नहीं थे उसमें।

ऐसा नहीं कहा गया कि तुम आओ, फिर भी गोपियें, गायें, पशु पक्षी सब खींचे चले आए। विश्व ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां मूक हैं, उनका एहसास पशु पक्षियों को होता है, मनुष्य को नहीं। उसी प्रकार तराना एक रहस्यमय सांकेतिक भाषा है, साधारण ज्ञान से उसकी परिभाषा कठिन है। मैं अपनी संस्कृत तराने की रचना राग ललित में प्रस्तुत करता हूँ।

अब मैं आपके सामने राग शाहनामे में तराने की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि मेरी अपनी बनाई संस्कृत में है।

0: संगीत सरिता में ख्याल और तराने की विशेषताएं शीर्षक से श्रृंखला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर इनका साथ दिया था पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर संगत की थी ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांव।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: अभी आपने ये गीत सुना फिल्म नरसी भगत से, आवाजें हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की, गीतकार जी एस नेपाली और धुन बनाई रवि ने।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए सुने अगला गाना। फिल्म है 12 o'clock, गायक मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ है यहाँ पे, और स्वरबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत ओपी नैयर का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बालयोगी से। गायक हेमंत कुमार थे, बोल पंडित भरत व्यास के, संगीत चित्रगुप्त का था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब समय है अंतराल का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: अभी ये गीत आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दस पड़ बेचा।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्म हावड़ा ब्रिज का गाना आपने सुना, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया ओपी नैयर ने, आवाज आशा भोसले की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
4: पैदा हुआ।
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: स्वच्छता ही सेवा है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फिरोज खान की जयंती है। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं को याद कर रहे हैं उनकी फिल्मों के माध्यम से।

0: फिल्म धर्मात्मा का ये गीत आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीतकार थे इंदिवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये था फिल्म अपराध का दो गाना, गायक थे किशोर कुमार और आशा भोसले, गीत के बोल लिखे इंदिवर ने, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आर

0: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे।
1: इस अंतराल से पहले आपने जो गाना सुना उसको हमने लिया था फिल्म नागिन से। आवाजें थी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गटले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी ना कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: अभी आपने सुना फिल्म मेला का गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आरडी बर्मन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म आदमी और इंसान का गाना। युगल स्वर थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के, बोल साहिर लुधियानवी के और तर्ज थी रवि की।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

अभी आपने सुना एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गाना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीत था उषा खन्ना का। अब इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात के लिए अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में

0: बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
0: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18 हजार करोड़ रुपए से 6 लाख 27 हजार करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है

0: बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
1: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में हैं। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र

0: द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है। युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 47वीं कड़ी।

15 अगस्त 1947 को पहले ध्वज वंदन के समय सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम का गायन किया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रसंग, आने वाले समय में राष्ट्रगीत कौन सा होगा, इस विषय में आम लोगों के या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं था। मानो वंदे मातरम ही राष्ट्रगीत होगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का नेतृत्व करने वाले और सभी के मन में आदर का स्थान रखने वाले महात्मा गांधी की इस बारे में भूमिका अभी स्पष्ट होनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गाए गए वंदे मातरम का प्रभाव उनके मन पर स्थायी रूप से रहा था। 29 अक्टूबर 1947 को गांधी जी की दिल्ली में हुई प्रार्थना सभा में श्री अरविंद के अध्यात्म मार्ग के शिष्य और गायक दिलीप कुमार रॉय ने अपनी संगीत रचना में वंदे मातरम का गायन किया। अब सुनिए दिलीप कुमार रॉय के स्वर में वंदे मातरम की वो संगीत रचना जो उन्होंने बंगाली लोकगीत शैली में गाई थी।

वंदे मातरम इस गीत के प्रति दिलीप कुमार रॉय को असाधारण आत्मीयता थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण हिंदुस्तानी और उत्तर हिंदुस्तानी भारत की दो मुख्य गायन पद्धतियों में जुगलबंदी या सहगायन के रूप में संगीत रचना बनाई। भारत रत्न M.S. सुब्बुलक्ष्मी और स्वयं दिलीप कुमार रॉय ने ये गायन किया था।

0: भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी संविधान सभा की अंतिम बैठक अभी होनी थी। राष्ट्रगीत कौन सा हो इस विषय पर चर्चा शुरू थी। पंडित नेहरू की पहल पर रविंद्रनाथ के जन गण मन गीत का राष्ट्रगीत के लिए आग्रह किया गया। वंदे मातरम में राष्ट्रगीत के अनुरूप या अंतरराष्ट्रीय समूह में बजाई जा सके ऐसी संगीत रचना नहीं है, ऐसा एक मुद्दा रखा गया था। उसका समाचार पढ़कर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम करके एक संगीत विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रगीत के बारे में मेरे विचार लिए जाएं ऐसी विनती की।
1: मास्टर कृष्ण राव फुलंब्रीकर। मराठी संगीत नाटक, शास्त्रीय संगीत और नवागत फिल्म संगीत के क्षेत्र के एक बड़े व्यक्तित्व थे। पंडित भास्कर बुआ बखले की सांगीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले मास्टर कृष्ण राव एक प्रयोगशील संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1936 के आसपास प्रभात फिल्म कंपनी में संगीत निर्देशक के रूप में काम करते हुए वी शांताराम की पहल पर मास्टर ने स्वयं अपनी झिंझोटी राग की रचना प्रभात के स्टूडियो में ही ध्वनिमुद्रित की थी। उस समय के फिल्म संगीत की संगीत रचना के अनुसार ही उसमें वाद्यों का उपयोग और ऑर्केस्ट्रेशन किया गया था।

मास्टर कृष्ण राव ने मराठी संगीत नाटकों में बाल गंधर्व के साथ काम किया था। कुल वधु जैसे नए नाटकों को अलग संगीत भी दिया था। संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम गायन की जो परंपरा थी वह संगीत रचना भी मास्टर की ही थी। आगे चलकर छोटा गंधर्व जैसे प्रसिद्ध गायक अभिनेता जयराम और जयमाला शिलेदार परिवार, राम मराठे जैसे गायक अभिनेता अपने संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम का गायन करते थे। छोटा गंधर्व द्वारा संगीत सौभद्र इस नाटक के अंत में नांदा सौख्य भरे इस पद के साथ जोड़कर गाया गया वंदे मातरम का ये ध्वनि मुद्रण आप सुनिए।

0: गायन अनेक बड़े कार्यक्रमों में करते थे। परंतु आकाशवाणी पर वंदे मातरम गायन की अनुमति नहीं मिल रही थी। अंत में मास्टर कृष्णराव ने सीधे प्रसारित हो रहे आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम में झिंझोटी राग के नाट्य पद को जोड़कर बिना रुके वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। ये ध्यान में आते ही स्टेशन डायरेक्टर बुखारी ने तुरंत विद्युत प्रवाह बंद कर दिया। वंदे मातरम का गायन रोके जाने के विरोध में मास्टर ने आकाशवाणी पर बहिष्कार कर दिया। आगे 10 साल बाद 1947 में चैत्र पाड़वा पर वल्लभ भाई पटेल के निमंत्रण पर आकाशवाणी पर बुखारी की ही उपस्थिति में वंदे मातरम गाकर बहिष्कार वापस लिया। बीच के काल में 1942 के 8 अगस्त को मुंबई के भारत छोड़ो आंदोलन की सभा में मास्टर कृष्ण राव ने ही वंदे मातरम गाया था, इसलिए फिर एक बार वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए मास्टर ने प्रयास शुरू किए।
1: मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम किया। उसका उत्तर आया, पंडित नेहरू और अन्य संसद सदस्यों के सामने प्रदर्शन दिखाने की अनुमति मिली। उसकी पूर्व तैयारी के रूप में मास्टर स्वयं पुणे के पुलिस संचालनालय की पुलिस परेड के साथ खुद कदम मिलाकर मार्च पास्ट की दृष्टि से इस संगीत रचना की उपयोगिता को परख रहे थे। दिल्ली में जनरल करियप्पा के सामने और पंडित नेहरू के सामने उसका प्रदर्शन हुआ। मिलिट्री बैंड के प्रमुख लजपत सिंह ने उसे बजाकर देखा और उसकी सफलता की गारंटी दी।

0: परंतु यह राष्ट्रगीत दुनिया के अन्य देशों के घोष दलों को भी बजाना आना चाहिए। पाश्चात्य संगीत रचना से भी उसकी निकटता हो, ऐसी सूचना मिलने के बाद मास्टर कृष्णराव मुंबई आए और नायगांव के पुलिस मुख्यालय के ब्रिटिश संचालित घोष विभाग के प्रमुख C.R. गार्डनर के सहयोग से विदेशी पद्धति की स्वर रचना में मूल धुन को धक्का न लगाते हुए घोष पर अभ्यास किया। नेविल बैंड के प्रमुख स्टैनले हिल्स ने ब्रास वाद्यों पर यह संगीत रचना तैयार की। इन दोनों पाश्चात्य संगीत विशेषज्ञों ने मास्टर कृष्णराव की संगीत रचना के बारे में अत्यंत अनुकूल मत और अभिप्राय दिए। इसलिए अत्यंत उत्साह से मास्टर कृष्णराव ने संविधान सभा और पंडित नेहरू से फिर से नए प्रदर्शन की अनुमति मांगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 47वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम के दुर्लभ ध्वनि मुद्रण मिलिंद सबनिस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
0: विविध भारती चित्रलोक कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
6: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी को चित्रलोक कार्यक्रम में हम नमस्कार करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई धूमधाम से होती है और अनंत चतुर्दशी हमें सिखाती है कि जीवन में उत्सव भी अनंत हैं और विदाई भी। उसी यात्रा का एक पड़ाव आज के दिन गणपति बप्पा को विदा करते हुए हम महसूस करते हैं और कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

0: अभी आपने सुना कालचक्र फिल्म का गाना, आवाज़ें सुरेश वाडकर और साथियों की, गीतकार योगेश और संगीतकार विजय वटलवी की।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

0: अभी आपने सुना फिल्म कलंक का गाना, गायक अरिजीत सिंह, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात

0: पूरे काम कित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम में समय हो गया है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म किसी का भाई किसी की जान। गायक कमाल खान, पलक मुच्छाल, गीतकार शब्बीर अहमद, संगीत हिमेश रेशमिया का।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लइयो भुनसारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
0: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया।
5: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
0: आ रहे हैं विविध भारती पर।
6: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
0: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना फिल्म हम शक्ल का गाना स्वरते हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े के, गीतकार थे समीर अंजान और संगीतकार हिमेश रेशमिया।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: अभी आपने सुना बागी फिल्म का गाना, आवाज़ें अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर और अमाल मलिक की, गीतकार संजीव चतुर्वेदी और संगीतकार अमाल मलिक।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
1: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
4: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुंसारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
6: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया।
5: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
6: आ रहे हैं विविध भारती पर।
7: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
6: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रहे हैं। वे चिंतक, लेखक, पत्रकार, संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में रहे। दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में एकात्म मानववाद और अंत्योदय को विशेष स्थान प्राप्त है। एकात्म मानववाद में उन्होंने मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एक समग्र इकाई के रूप में देखने की बात रखी। वहीं अंत्योदय का आशय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान से जुड़ा है। आइए सुनते हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ये गाना।

अभी आपने सुना जो गाना उसे गाया अरिजीत सिंह ने, बोल मनोज मुंतशिर के और संगीतकार आर को। लीजिए सुनिए अगला गाना।

अभी आपने सुना फिल्म एजेंट विनोद का गाना, जिसे आवाज़ दी अरिजीत सिंह ने, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम। अब समय हो चला है एक अंतराल का।

अभी आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का गाना, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

0: कॉलेज कैंपस फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना, जिसे सुनिधि चौहान ने गाया, गीतकार साहिल सुल्तानपुरी और संगीतकार अतुल।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी को मेरा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।

0: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तो सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम आज का अखबार का।
2: आज का अखबार।

0: आज का अखबार।
1: आज का अखबार ये कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आर लिसनर्स। जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत तो हम कर ही चुके हैं, तो हालचाल भी अब आप बताएं हमें अपना, कैसे हैं आप भाई? आज तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपका हाल बहुत अच्छा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता, मौसम देखिए जनाब बाहर। जी आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अब देखिए ना, पिछले 2-3 दिनों से बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी और पसीने छूट रहे थे, मन घबरा रहा था और यूँ लग रहा था कि भाई बस फिर से कहीं दूर चले जाएं ठंडी हवाओं में, ठंडी फिजाओं में, है ना। लेकिन आज सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे यहाँ तो यही है, बादल भी कुछ कुछ छाए हुए हैं और हमें लगता है कि शायद बारिश के भी आसार हैं। तो मौसम अच्छा होना तो मन तो अच्छा हो ही जाता है, तन मन जब अच्छा होता है तो दिल में खुशी भी होती है और ऐसे में मन करता है कि बस कहीं निकल जाएं, घूमें फिरें। ज़्यादातर तो भाई पहाड़ों की ओर जाने का मन करता है। अब तो वैसे लोग पहाड़ों से होकर आ गए, लेकिन कहीं और भी जाया जा सकता है। ऐसे सुहाने मौसम में सफ़र पे निकल जाना, घूमना फिरना और मन में एक अलग तरह की खुशी की जो अनुभूति होती है ना, उसको महसूस करना, इन सब में बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह अगर हम अच्छी बातें भी कर लें थोड़ी सी, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए ना, एक दूसरे के साथ मिलना, बैठना, अच्छी अच्छी बातें करना, परिवार के साथ मिलना जुलना, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचना, एक दूसरे का जो सुख दुख है उसको बांट लेना, है ना, ये सारी अच्छी बातें। तो ये अगर आप सुबह सुबह पॉजिटिव होकर सोचें ना कि आज तो भाई मुझे कुछ भी बुरा नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है, जो कहना है अच्छा कहना है, मीठा कहना है और दूसरे का दिल जीत लेना है, तो बस देखिएगा आपके दिन की शुरुआत फिर कितने अच्छे से होगी।

जी, कहते भी हैं ना, जब आप सफ़र करते हैं, एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, तो रास्ते में जो खूबसूरती बिखरी होती है उसको महसूस जब आप करते हैं, तो फिर कुछ नए अनुभव जो हैं उनको भी आप समेट लेते हैं, तो ये सब कुछ मन को बड़ा सुकून देता है। कभी पहाड़ों की ठंडी हवाएं, तो कभी नदियों की कलकल, कभी हरियाली से भरे हुए रास्ते, और कभी अपनों के साथ बिताए हुए प्यारे से खुशनुमा से पल, यही सब कुछ ना सफ़र को यादगार बनाते हैं। तो आप सोच क्या रहे हैं, थोड़ा सा आगे का सोचें, तो 2-3 छुट्टियां हैं आपके पास तो निकल सकते हैं आप घूमने फिरने के लिए। हाँ, एक चीज़ और है, जब आप घूमते हैं फिरते हैं ना, ताज़ी हवा लेते हैं, खुले वातावरण में सांस लेते हैं ना, तो स्वास्थ्य जो है आपका, सेहत जो है आपकी, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, और फिर दवा जो आप खाते हैं उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है आपको, है ना। और दवा वैसे भी स्वस्थ तो करती है, लेकिन तन मन को ना एक फ्रेशनेस जो होती है वो नहीं देती, और एक ऊर्जा जो होती है नई, उससे नहीं भरती। हाँ, तो दवा का हमने जिक्र किया है, तो आपको ये भी बता दें, आज वैसे विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी है। जी श्रोताओं, बिल्कुल है। ये जो दिन है ना, ये इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि दवाओं का सही ज्ञान होना, मरीज़ों की सुरक्षा, और फिर उनकी सेहत में जो योगदान है ना एक फार्मासिस्ट का, उसका बड़ा महत्व है। डॉक्टर की सलाह से लेकर दवा के सुरक्षित इस्तेमाल तक फार्मासिस्ट स्वस्थ सेवा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ये मत भूलिएगा आप। अब देखिए ना, स्वस्थ समाज के निर्माण में फार्मासिस्टों की भूमिका को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, और जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब किसी फार्मासिस्ट ने दवा के बारे में आपको सही जानकारी दी और आपकी मदद की है, तो आज का दिन उन्हीं के नाम भी है। बातें कुछ और भी करेंगे, गीत हम कुछ और भी आपको सुनवाएंगे। ऐसा करते हैं, चलते हैं अब हम समाचार पत्रों की ओर। आज की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ जो हैं वो हम आपको बताते हैं। अपने देश की बात कर लेते हैं पहले, तो ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड पर सुप्रीम कोर्ट के मार्च के फैसले को लेकर केंद्र ने मांगा है 2 साल का समय। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे, पुराने और जारी भर्ती मामलों को व्यवस्थित ढंग से निपटाकर फैसला 2 साल के भीतर लागू किया जाएगा। देश में ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग और अंतर एजेंसी सहयोग पर होगा गंभीरता से काम, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर से ली जाएगी मदद। चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है, फील्ड अधिकारियों के पास ही वैधानिक अधिकार, कहा कोई और नहीं कर सकता ये काम। राहुल गांधी ने किया है बड़ा दावा, कहा भाजपा कई राज्यों में लगातार जीत रही है, 100% यकीन कि चुनावों में धांधली हुई, 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के हैं हमारे पास पर्याप्त सबूत। दो अक्टूबर को यूपीआई से पेमेंट करने पर कारोबारियों ने जो हड़ताल की है, तो 2 अक्टूबर को यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे कारोबारी। 500 से अधिक कारोबारी संगठनों ने विरोध का फैसला किया है। 2000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। से 30 सितंबर की 3 दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान

0: दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी पर नहीं लगेगी कोई भी फीस और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। सीबीएसई ने 2026-27 सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश आप सुन लें।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। मैं हूँ आपके साथ सुनीता भगत और इस प्रोग्राम में आप जानते ही हैं, हम आपको देश विदेश की और अपने शहर की, आसपास के शहरों की जो सुर्खियाँ होती हैं, ताज़ा तरीन वो बताया करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुर्खियाँ हैं, आज के जो विदेशी मुख्य समाचार हैं, हम कह सकते हैं वो इस तरह से हैं। श्रोतों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला किया है, 10 ठिकानों को निशाना बनाया है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, पाकिस्तान ने दावा किया अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, तालिबान ने खारिज किए सभी आरोप। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, फिर हमला किया तो हिंद महासागर तक पहुंचेगा ये युद्ध। अमेरिका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान और उत्तराखंड में जारी, करीब 600 जवान ले रहे हैं हिस्सा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर पहुंचे अभ्यास स्थल पर और दोनों सेनाओं की ट्रेनिंग देखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले नेतन्याहू, गाजा में नरसंहार सदी का सबसे बड़ा झूठ है। उनके भाषण से पहले ही और भाषण के दौरान कई प्रतिनिधि बाहर निकले, फलिस्तीनी मिशन ने की थी अपील। व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया संदेश, रेस हो रेसलिंग नहीं, और ट्रंप बोले, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी, संतुलित व्यापार की ओर बढ़ाएंगे मिलकर कदम।

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। तो सुर्खियां कुछ और भी हैं, ट्राई सिटी की सुर्खियां लेकर आएंगे आपके लिए, और फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के भी जो मुख्य समाचार हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। खेलों की बात तो होगी ही, मौसम का हाल भी बताएंगे आपको। उससे पहले ये एक प्यारा सा गीत।

तो अच्छा लगा ना आपको ये गाना? भाई इस तरह के प्यारी प्यारी मनभावन से गाने अगर आप सुबह सुन लेना तो बस दिन बन जाता है। अच्छा तो मन खुश होता है ना इस तरह के अच्छे अच्छे गाने सुनकर, तो एक चीज़ से ना और भी मन खुश हो जाता है, शायद आपने भी महसूस किया हो, और वो है स्वच्छता। जी जी बिल्कुल, साफ सफाई, घर में हो, घर से बाहर हो, अपने तन मन की हो, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर आ रहा है आप जानते ही हैं, और गांधी जी ने तो भाई स्वच्छता पर बहुत कुछ कहा है, और आप जानते हैं स्वच्छ रहना बेहद ज़रूरी है। स्वच्छ अगर आप नहीं रहेंगे ना तो फिर आपका ये जो जीवन है वो किसी काम का नहीं। देखिए ना श्रोताओं, आप गंदगी में जब रहेंगे तो तन मन आपका शुद्ध नहीं रहेगा, और गंदगी आपके आसपास नहीं जब रहेगी ना तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, तन भी स्वस्थ होगा। अब स्वच्छता जो है ना वो हमारे आसपास की सिर्फ सफाई नहीं है, स्वस्थ जीवन जो है और उसके साथ सकारात्मक सोच जो है, इसी से ना सुंदर समाज बनता है और फिर इस समाज की पहचान भी बनती है। हमें ये मान लेना चाहिए कि स्वच्छता हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, सड़कें हमारे शहर की अच्छी होंगी, गलियां साफ सुथरी होंगी, वातावरण जो है वो स्वच्छ होगा, पानी हमारा स्वच्छ होगा, तो खुशहाली अपने आप ही आएगी ना। तो हम अपने आसपास जब सफाई रखते हैं बीमारियों से बचाव होता है हमारा, ताजगी आ जाती है हमारे जीवन में, और भाई प्रसन्नता बनी रहती है। तो आप ज़रूरी नहीं कोई बड़े अभियान से आप स्वच्छता करने की शुरुआत करें, छोटी छोटी आदतें अगर आप अपना लेना, जैसे कूड़ेदान में कूड़ा डालना, और जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी घूमने फिरने की बात की, बाहर जब हम जाते हैं या फिर यूं ही शहर में जब निकलते हैं, गली मोहल्लों में निकलते हैं, तो ये जो सार्वजनिक स्थान होते हैं इनको हम गंदा ना करें। हाँ प्लास्टिक जो है उसको भी उपयोग बहुत कम करना होगा, और ख़ुद तो जागरूक होना ही है हमें स्वच्छता के बारे में, दूसरों को भी जागरूक करना है ये मत भूलिएगा, और घर के जो बच्चे हैं ना उनको तो ज़रूर ही ये बात बताइएगा।

0: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे।
1: तो चलिए, स्वच्छता की बात भी हमने कर ली, अब बात करनी है हमें ट्राई सिटी की। क्या सुर्खियां हैं आज ट्राई सिटी की? चंडीगढ़ शहर की बात कर लेते हैं पहले। तो निगम चुनाव की आहट में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ गई है, 96 करोड़ का रोड वर्क शुरू हुआ है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लीज होल्ड टू फ्री होल्ड कन्वर्जन मंजूर होने के बाद भी 12,000 से ज्यादा मकान अब भी लीज होल्ड पर अटके हैं। विशेष कैंप लगाया गया, 10 दिनों के भीतर 582 लोगों ने जानकारी ली। प्रशासन के सभी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और पेंशनरों को आज ही मिलेगा वेतन और पेंशन भी। शहर के सेक्टर 46 के धनवंतरी अस्पताल में बनेगा 250 बेड का आधुनिक सेंटर, केंद्र से मिली 10 करोड़ की ग्रांट। पीजीआई के दो विशेषज्ञों प्रोफेसर डॉ. कुशलजीत सिंह सोड़ी और एडिशनल प्रोफेसर डॉ. अनमोल भाटिया को मिला राष्ट्रीय सम्मान। उन्नीसवां ग्लोबल पीस फेस्ट 30 सितंबर से सेक्टर 32 में होगा। आई एम द चेंज, इस थीम पर जुटेंगे 9 देशों के युवा और लीडर्स। चंडीगढ़ शहर के क्लबों में रात 12 बजे के बाद अब एंट्री नहीं होगी और 1 बजे तक क्लब को बंद करना होगा, वरना लाइसेंस किया जा सकता है रद्द। ग्रेटर मोहाली गमाड़ा मुख्यालय में ईडी की रेड पड़ी, 37 बैग रिकॉर्ड जब्त किए गए। ईडी का दावा, जैन और सिसोदिया की गमाड़ा अफसरों से हुई बैठक, आम आदमी पार्टी ने आरोप को नकारा।

मोहाली में इको सिटी 4 के लिए गमाडा ने जारी किया नोटिफिकेशन। एम्स मोहाली में जूनियर रेजिडेंट के 110 नए पद मंजूर हुए, अब कुल पद 207 हो गए हैं।

आईसर मोहाली लाएगा एक नया सिस्टम, 27 सितंबर को किया जाएगा लॉन्च। 3 दिन पहले से ही मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान। मोहाली में श्रोताओं, चोरी और नशे को लेकर फेज 6 के लोगों ने विधायक कुलवंत सिंह से मुलाकात की है और निगरानी बढ़ाने की मांग की। पंचकुला सेक्टर 14 में सरकारी महिला पीजी कॉलेज में ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर सत्र आयोजित किया गया। 80 छात्राओं ने लिया भाग। नवरात्र और त्योहारों के चलते मनसा देवी में चोला चढ़ाने के लिए 29 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। पंजाब पुलिस में 450 एएसआई की होगी सीधी भर्ती, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दी मंजूरी। एससी बहुल 3763 गांव के विकास पर 750 करोड़ से अधिक खर्च करेगी पंजाब सरकार। हर गांव को शुरुआत में बिना शर्त 20 लाख रुपए का फंड जारी किया जाएगा। पंजाब रोडवेज, पन बस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन और सरकार के बीच सहमति बनी। नई भर्ती में पुराने कर्मियों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा विभाग ने डिप्टी कमिश्नरों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। केवल 3 मौकों पर ही लगेगी अध्यापकों की सर्वे में

छुट्टी, स्कूलों में प्रभावित नहीं होगी पढ़ाई। हरियाणा में बड़ी पहल हुई है, सतर्क हरियाणा ऐप लॉन्च हुआ, हेल्पलाइन पर कॉल और डिजिटल सबूत अपलोड की होगी सुविधा, भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो से कर सकेंगे और शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रहेगी। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने उठाए बड़े कदम, 8,134 नोडल अधिकारी हुए तैनात। हिमाचल की बात करें तो बुजुर्गों के घर पहुंचेगा अस्पताल, 1 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के मामले में स्पष्ट किया, बिना कानूनी प्रक्रिया और मुआवजा दिए वर्षों तक नहीं कर सकते जमीन पर कब्जा। और हिमाचल की नई औद्योगिक नीति जल्द ही आएगी, मशीनरी पर सब्सिडी और सस्ती बिजली का प्रस्ताव है। एशियाई खेलों की बात करें तो कल भारत ने 5 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में रिले टीम ने रजत जीता, 10,000 मीटर में सीमा ने कांस्य पदक जीता, रोइंग में सलमान और सतनाम ने भी जीता कांस्य पदक, वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक हासिल किया। भारत ने कोरिया को 8-2 से हराकर हॉकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश में भी भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीत लिया है। आज भारत कबड्डी, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग के मुकाबलों में उतरेगा। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला है। फुटबॉल में आज मैत्री मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम पनामा के साथ खेलेगी। मौसम की बात करें तो समय से एक हफ्ता पहले ही मानसून हुआ विदा, चंडीगढ़ में 16% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 सितंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश के आसार हैं। आज भी बादल छाए रहेंगे और कल बूंदाबांदी की संभावना है। और तापमान कल का अधिकतम रहा चंडीगढ़ शहर का 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 6:15 पर होगा, सूर्योदय कल होगा 6:13 पर। और अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: नमस्कार।
1: आज का अखबार,
0: आज का अखबार कार्यक्रम आपने विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से सुना। 10 बजने को ही आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
4: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और इस में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते, इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश,

0: ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओ, इस समय 10:05 हुए हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
4: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
5: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
4: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
5: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
6: हेलो
7: हेलो,
6: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
7: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई, सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले आपको बता देते हैं आज का टॉपिक, आज का विषय। तो विषय ये है कि सड़क पर संयम रखना, सावधानी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे श्रोता भी ऐसा ज़रूर करते होंगे। हाँ, लेकिन बातचीत तो हम आपसे करेंगे ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या करते हैं आप इसके बारे में? क्योंकि कई बार हम सोचते तो बहुत हैं मन में, लेकिन करते नहीं हैं उसे, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में हम उसे नहीं करते हैं। तो होता यूँ है कि फिर जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं रहती। तो सावधानी हमेशा बरतनी ही चाहिए, और सड़क पर सावधानी तो बहुत ज़रूरी है, सड़क पर तो संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज यही विषय चुना है, इसी विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए, टेलीफोन आना शुरू हो गए हैं, करते हैं बातचीत। देखते हैं आज कौन से हमारे पहले कॉलर हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो चंडीगढ़।
8: हेलो, नमस्कार सुमिता भगत मैडम जी।
1: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
8: मैं सतपाल सिंह, बिंद्रा सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
1: जी बिंद्रा जी, क्या हाल चाल है आपके?
8: ठीक है, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है हमें।
1: जी जी, आपसे भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है।
8: जी जी,
1: आप ठीक हैं?
8: सब कुछ ठीक है मैडम।
1: अच्छा, ये बताएं, अभी घर पे ही हैं या कहीं जा रहे हैं?
8: घर पे ही हैं मैडम, पास में ही हैं।
1: तो घर से निकलेंगे?
8: हाँ, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे।
1: हाँ, थोड़ी देर में निकलेंगे, तो सड़क पे चलेंगे ना? चलेंगे या कोई वाहन चलाएंगे?
8: रोज चलते हैं, रोज वाहन चलाते हैं मैडम।
1: कैसा संयम होता है आपका सड़क के ऊपर, किस तरह की सावधानी बरतते हैं आप?
8: मैडम, कुछ गलतियां तो मुझसे भी होती हैं।
1: अच्छा जी,
8: जैसे संयम का जहां तक सवाल है मैडम, कहीं कई बार जाने अनजाने संयम हम खो बैठते हैं। ऐसा एक वाक्या 2 दिन पहले हुआ।
1: अच्छा,
8: चंडीगढ़ में किसी मोड़ पे ट्रैफिक था तो गाड़ी रुकी हुई थी, और मैं पीछे से हॉर्न बजा रहा था कि गाड़ी चल के उन्हें रही है
1: जी।
8: तो मैंने जब 2-3 मिनट वेट किया, उसके बाद जाकर देखा तो आगे गाड़ी पार्किंग से निकालने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से मेरे से जो अगली गाड़ी थी वो भी रुकी हुई थी।
1: अच्छा जी,
8: तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं रोक कर क्या करा, मैं बार बार हॉर्न बजा रहा था और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि गाड़ी आगे के उन्हें बढ़ा रहा है।
1: जी जी जी जी, करें आप अपनी बात, हम सुन रहे हैं।
8: तो ये बात मैडम मैंने कई बार अनुभव किया है, मध्य मार्ग में आते जाते।

0: कई बार कोई बुजुर्ग कार चला रहे हैं या कोई महिला गाड़ी चला रही है
1: जी,
0: तो वो अपनी नॉर्मल 50-60 की स्पीड में चलते हैं, तो पीछे से आने वाला वो देखता नहीं कि अगला ड्राइवर कौन है और पीछे से हॉन्किंग करते जाते हैं।
1: अच्छा, तो मसला आपका ये है कि बिना वजह ही हम लोग हॉर्न बजाते हैं।
0: हॉर्न बजाते हैं और संयम, गुस्सा भी कभी कभी करते हैं, और कभी हमें थोड़ी जगह मिल जाए दाएं से या बाएं से ओवरटेक करने की तो ओवरटेक कर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं।
1: अच्छा जी, अब देखिए, तो गुस्सा करने वाली बात होगी तो गुस्सा आएगा, लेकिन सड़क पे हम गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि संयम जहाँ पे भी आप छोड़ देंगे ना अपना, तो वहीं पर दुर्घटना होने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है ना।
0: इसमें एक सुझाव मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा मैडम, जो मैं अनुभव करता हूँ, इतने करीब 25-30 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ चंडीगढ़ में।
1: जी जी,
0: तो मेरा ये अनुभव रहा है कि हम पीक आवर्स में सुबह 8 से 10 घर से सही प्लानिंग करके चले कि अगर हमारा रास्ता आधा घंटा आधे घंटा का है तो हम 15 मिनट पहले घर से निकले, कि वो आधे घंटे की जगह हमें शायद 45 मिनट लग जाए अपने गंतव्य पर पहुंचने तक।
1: जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसा करते भी हैं, क्योंकि कई बार भीड़ होती है सड़क पे सुबह सुबह, जब ऑफिस का वक्त होता है, स्कूल का वक्त होता है, तो काफी सारे लोग जल्दी निकल जाते हैं, और ये अच्छी बात भी है, उससे अफरा तफरी नहीं मचती है सड़क के ऊपर, है ना।
0: और हम घर में से बाद में निकलते हैं, देर निकलते हैं, कहीं हमारी ट्रेन छूट रही होती है, कहीं ऑफिस लेट हो जाते हैं, इस वजह से हम गाड़ी तेज चलाते हैं और संयम खो बैठते हैं।
1: चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, सुझाव भी अच्छा दिया है। आपका फोन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
2: नाम हमारा दीदी सी पंचकूला होटल से, गांव से मैं आ गया 20 तारीख को, 19 को चला, 20 को आया, गांव में थी 3 महीना।
1: अच्छा जी, पंचकूला में रहते हैं आप? पंचकूला में रहते हैं
2: दीदी, क्या कर रहे हो
1: आप? पंचकूला से हमें कॉल कर रहे हैं?
2: मतलब 19 तारीख को चला हूँ, डब्लूगढ़ से आ गया हूँ मैं 20 को, और आशा की आज सुबह आपको सुबह आए हो गया, सुबह 6-7 दिन तो हो गया।
1: अच्छा, तो भाई आप बताएं, सड़क पर सावधानी रखते हैं आप?
2: हाँ दीदी, ये है कि सावधानी, क्योंकि रोड पर तो चलना अब आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो देखभाल के नहीं चलेगा आदमी तो दिक्कत है, क्योंकि इतना गाड़ी मोटर हो गया कि जो है आपने साइड से जो चलना चाहिए, और फिर घूमना है तो देख के इधर उधर देख के तो निकलना चाहिए, साइकिल से हो चाहे सुबह गाड़ी से हो, क्योंकि अपना वो लाइट भी जला सके, कि बहुत आदमी को दीदी देखता हूँ कि वो मोबाइल से बात में करते रहते हैं, गाड़ी में चलाते रहते हैं।
1: हाँ, ये आपने ना बड़ी एक महत्वपूर्ण बात की है मोबाइल के बारे में, क्योंकि लोग अक्सर गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और सड़क पर चलते चलते भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।
2: और वो नीचे देखने लगते हैं मोबाइल को, गाड़ी तो चलती रहती है, आपको आ गया अचानक आ गया तो वो आदमी तो जब ही जाएगा, क्योंकि मोबाइल से जो कोई बात करना दीदी तो कम से कम गाड़ी साइड पे लगा लिए, नहीं तो फिर कान रूट पे लगा लिए, और अपना रोड पे देखते रहे, वो छोटा वाला जो आता है वो कान में लगा लिए, और मोबाइल देखने का सवाल नहीं पड़े।
1: और हम तो भाई यहाँ पर ये भी कहेंगे कि अगर आप किसी दूसरे की गाड़ी में है ना, किसी ड्राइवर के साथ आप जा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ड्राइवर बार बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो आप बड़े विनम्रता के साथ उसे भी मना कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, इससे दुर्घटना हो सकती है।
2: देखो यार, चौक पे जो अभी जो साइकिल पार करो तो वो गाड़ी जो देखता हूँ तो वो नीचे जो ध्यान है मोबाइल पे, तो भाई गाड़ी से जो आगे आ जाए आदमी, कोई भी पैदल हो चाहे साइकिल से चाहे बाइक से हो, तो फिर एक्सीडेंट होना तो वो तो संभव।
1: जी भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। सो बात की एक बात ये है कि जो नियम है ना सड़क पर चलने के, हमें सम्मान करना चाहिए उनका। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अगली टेलीफोन कॉल हम लेते हैं श्रोताओं, लेकिन उससे पहले ये संदेश सुन लेते हैं।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैडम संकट मोचन शिमला से प्रदीप बात कर रहा हूँ और 2 दिन से आपके शहर मोहाली में हूँ।
0: अच्छा जी,
1: और आज तो यहाँ पे शिमला वाला मौसम बना हुआ मैडम।
0: अच्छा जी,
1: ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम शिमला में बैठे हैं।
0: जी हाँ, हमने आज सुबह ही जिक्र किया है आज का अखबार प्रोग्राम में। आज यहाँ ट्राई सिटी में बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं और देखिए ना शिमला यहीं पर बन गया है।
1: बस वो ऐसा लग रहा कि जैसे शिमला में बैठे हुए और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है मैडम यहाँ पर ना।
0: हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको अच्छा लग रहा है। अब ये बताएं कि आप सड़क पर किस तरह से संयम रखते हैं, क्या क्या सावधानी आप लेते हैं?
1: मैडम ये मैं तो आज के विषय पर यही कहूंगा कि सड़क पर वाहन चलाते हुए हमें बड़ी सावधानी से चलना चाहिए, अपना भी और जो पैदल चल रहे होते हैं ना लोग, उनका भी ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो लोग पैदल कार्यालय और स्कूल जा रहे होते हैं ना बच्चे, उनका भी ध्यान रखना चाहिए और हमें बड़े संयम से चलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे हम सड़क पर तभी तो अपना जीवन भी बचा पाएंगे और दूसरे के जीवन की सुरक्षा भी हम कर पाएंगे।
1: जी मैडम, और वाहन चलाते हुए जो हमें ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो हमारा ध्यान भटक जाता है और उससे कुछ भी अनहोनी हो सकती है मैम।
0: अब देखिए सड़क पर ना हमारी एक छोटी सी सावधानी ना हम सबकी जिंदगी बचा देती है। अब क्या होता है कि लोगों को बहुत जल्दी रहती है अपनी मंजिल तक पहुंचने में, जल्दी जाना है, तेज जाना है, तो इससे होता क्या है कि हम सुरक्षित नहीं रहते हैं। ये बात तो मतलब समझने की है और सब पढ़े लिखे हैं आज के इस जमाने में तो बड़ी आसानी से ये बात को समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: है ना। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो ये नहीं समझते हैं और कई बार सड़क पे भी हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, वो संयम खो देते हैं।
1: और हमें ना मैडम उचित दूरी बना के रखनी चाहिए एक दूसरे गाड़ी में ना, ताकि अगर आगे वाला कभी अचानक ब्रेक मार भी दे तो पीछे वाला जो है संभल जाए।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहा। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि मतलब ना तो वो इंडिकेशन देते हैं कि किस साइड को जाना, लेफ्ट राइट, वो मतलब जैसे चल रहे होते हैं एकदम या तो राइट को टर्न हो जाता है या लेफ्ट को, तो उससे जो पीछे चलने वाला व्यक्ति होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कभी जो है आपस में वो टक्कर भी हो जाती है इसी चक्कर में मैम।
0: जी आप सही कह रहे हैं, और टक्कर ना हो तो इसलिए हमें जो गति सीमा होती है ना उसका भी जरूर पालन करना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए और संयम जो है वो बहुत बहुत जरूरी है।
1: वो तो बहुत जरूरी मैम, रोड पर तो बहुत जरूरी है वो चीज ना। और जब जैसे मैडम बारिश वगैरह होती है ना तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे 2-व्हीलर वाले हो गए या 4-व्हीलर वाले, वो जो है मतलब जहाँ पर कीचड़ होता है ना वहाँ पे स्पीड बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं या ऑफिस को जो लोग जा रहे होते हैं उनके कपड़ों पर जो है वो कीचड़ वगैरह वो हो जाता है मैम।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हमें जहाँ पर भी पानी या कहीं गड्ढा है तो वहाँ पे बिल्कुल धीमी स्पीड कर लेनी चाहिए अपने वाहन की।
0: जी जी, फिर वही बात,
1: ताकि हम भी सुरक्षित और जो पैदल चलने वाले वो भी सुरक्षित।
0: संयम जरूर रखना है। आपका कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद
1: मैम।

0: कौन थी वो लड़की?
1: मैंने जब पूछा
2: ला ला ला ला ला,
1: बोल तेरा नाम क्या,
2: ला ला ला ला ला,
1: तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई

0: जी मनु भाई, मोटर चली पम पम पम, तो भाई हल्ला गुल्ला जो है ना वो गाड़ी में बैठ के बिल्कुल नहीं मचाना है। ये गीत हमने इसीलिए चलाया, खासकर ना अपने युवा साथियों के लिए मैंने ये गाना चलाया है। अब होता यूँ है ना कि कुछ पांच सात दोस्त मिलकर चल पड़ते हैं कहीं घूमने फिरने, घूमने जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप मौज मस्ती में आ जाते हैं ना और फिर सड़क पे चलने के जो नियम हैं, जो सावधानियां बरतनी हैं, उनको जब आप फॉलो नहीं करते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो हल्ला बिल्कुल नहीं मचाना है, बड़ी शांति से आराम से गाड़ी चलानी है, धीरे धीरे जाना है ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो और जो सड़क में आसपास आपके लोग चल रहे हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, तो प्रोग्राम चल रहा है हेलो चंडीगढ़। आज का विषय हमने ये चुना है कि सड़क पर संयम और सावधानी बहुत ज़रूरी है। कुछ और हमारे श्रोता हैं लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, पहले ये एक संदेश सुन लेते हैं उसके बाद कॉल उठाएंगे।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: चलिए प्रोग्राम की अगली कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: सुनीता मैडम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: कुमार बोल रहा हूँ, फैक्ट्री कॉमन से, चंडीगढ़ से।
0: अच्छा जी सुरिंदर जी नमस्कार,
2: कार्यक्रम में अच्छा है। सड़क पे हम जब वाहन चलाएं तो हमें बड़ा सावधानी और संयम से गाड़ी चलानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्पीड का कंट्रोल हो, स्पीड पर कंट्रोल होगा तो हम सुरक्षित होंगे और सामने वाले भी सुरक्षित होंगे। जी
0: सही कह रहे हैं आप। देखिए सबसे पहली जरूरी तो यही है कि जब भी घर से आप निकलें, रफ्तार जो है आपकी गाड़ी की वो बिल्कुल संयमित रहनी चाहिए, उसमें सावधानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बेतहाशा गाड़ी नहीं दौड़ा सकते हैं सड़क पे, चाहे आप दो वाहन पे हैं या अपने कार में हैं या कुछ भी है। तो उस तरह से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर आसपास के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है।
2: जी, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी सिग्नल लाइट की वजह से नहीं होते या कुछ होता है तो उस वक्त बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तो हमें बड़ा संयम पूर्ण धीरे धीरे गाड़ी चला के दूसरों को भी जगह दें ताकि वो भी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सके और हमें भी देरी ना हो। तो इस तरह जरा मतलब ये ध्यान जरूर रखें ताकि दूसरों को भी असुविधा ना हो और हमें भी ना हो, तो ये बहुत जरूरी है।
0: जी हम बार बार यही कह रहे हैं, अब देखिए ना सड़क सुरक्षा जो है वो सिर्फ ट्रैफिक के जो नियम है उनका पालन करना ही नहीं है, है ना, वहाँ तक सीमित नहीं है ये, अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए ना आपका क्या कहें संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है।
2: जी ये बहुत
0: है ना, क्योंकि रफ्तार पर नियंत्रण रखना और फिर नियमों का सम्मान करना और जो आपका सफर है वो सुरक्षित करना,
2: ट्रैफिक नियमों का हम ध्यान रखेंगे तो जी सबको सुविधा होगी और खासकर जो बुजुर्ग वहाँ पे सड़क पे चल रहे हैं तो उनको भी आश्वासन होगा कि हमें थोड़ी जगह मिल गई है तो हम आराम पूर्वक सड़क पार कर लेंगे। जी
0: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए जिंदगी तो सबके लिए समान ही है और इतनी ही महत्वपूर्ण है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो जब हम एक जिम्मेदार नागरिक बोलते हैं ना अपने आप को, एक पढ़ा लिखा नागरिक बोलते हैं, तो जो नियम बनाए गए हैं उनको सिर्फ हमने पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, सिर्फ चर्चा में ही नहीं लाना है, उनको हमने उपयोग में भी लाना है, अपने जीवन में भी ढालना है। अगर आपने उन बातों पर अमल नहीं किया है तो फिर कुछ फायदा नहीं है, है ना। चलिए आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।

0: करने के
1: बहुत
0: लिए
1: अच्छी,
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ जी, नमस्कार जी दीदी। हाँ
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं रामवीर बोल रहा जी, गांव किरमत से, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी।
0: अच्छा जी, हरियाणा पहुंच गए अब हम तो।
1: हाँ
0: भाई ये
1: जी, हाँ जी,
0: बताएं, हरियाणा का मौसम कैसा है इस समय?
1: हरियाणा का दीदी मौसम जो वो सुहावना मौसम है जी, गर्मी तो है नहीं जी, तो
0: अच्छा जी, सुहावने मौसम
1: ठंड
0: में
1: का मौसम
0: आप
1: थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है दीदी।
0: जी। अच्छा, तो इस सुहावने मौसम में घर से जब बाहर निकलते हैं आप, पहले तो ये बताएं आप कौन सा वाहन चलाते हैं, दुपहिया या फिर चार पहियों वाला?
1: दीदी मैं ये अपना स्कूटी वगैरह चलाता हूँ जी।
0: अच्छा, तो पूरा ध्यान रखते हैं ना जब आप सड़क पर उतरते हैं कि सावधानी बरतनी है?
1: दीदी देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जब हम सड़क पर चलते समय सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे तो हमारे जीवन की रक्षा तभी संभव हो सकती है दीदी।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए ना, हमें जहाँ तक पहुँचने की बहुत जल्दी होती है ना, लेकिन उसी जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देते हैं। और
1: हाँ दीदी देखिए, समय से पहले चलना चाहिए, जब हमें पता है कि हमें इस समय पहुंचना है तो उससे 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले घर से निकले ताकि समय पर पहुंच जाएं और जाते समय भी कोई परेशानी ना हो जी।
0: जी, हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बात कही थी, और बहुत अच्छी बात है कि आप समय पर थोड़ा सा घर से जल्दी निकल जाएं ताकि हड़बड़ी में आप कोई भी वाहन ना चलाएं। और हम सिर्फ वाहन चलाने की ही बात ना करें, यहाँ पर सड़क पर हम पैदल भी तो चलते हैं ना, तो
1: हाँ
0: पैदल जो
1: जी दीदी,
0: लोग
1: पैदल
0: चलते
1: भी
0: हैं
1: चलते हैं और
0: उनके लिए भी सावधानी बरतना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जो वाहन में बैठा हुआ है या चला रहा है।
1: बिल्कुल दीदी, हमें सड़क पर पैदल चलने वालों का ध्यान करना चाहिए, और जैसे क्रॉसिंग करनी है, ओवरटेक करना है, तो उसको बड़े आराम से करें, जल्दबाजी में ओवरटेक ना करें। जब खाली सड़क खाली रास्ता दिखे तभी ओवरटेक करें, अन्यथा ना ही करें तो इसमें अपना भला होगा जी।
0: जी, आपने बहुत अच्छा कहा, आपने समय निकाला हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद दीदी।
0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम,
0: गुड
1: समरिता
0: मॉर्निंग।
1: डोगरा,
0: गुड मॉर्निंग,
1: समरिता
0: कौन?
1: डोगरा बोल रही,
0: संगीता जी?
1: नहीं जी, समरिता।
0: समरिता। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, बताएं कैसे हैं आप?
1: मैम रिटायर हो गई गवर्नमेंट जॉब से ना, प्रिंसिपल
0: अच्छा
1: हो,
0: जी,
1: लेक्चरर थी इंग्लिश की, हिमाचल
0: अच्छा। चलिए, आपके पास तो
1: से।
0: काफी समय है सबको घर में सबको समझाने का कि भाई घर से बाहर जब हम निकले तो किस तरह से हम
1: बिल्कुल
0: सड़क पर सावधानी बरतें।
1: बिल्कुल मैम,
0: और पूरी
1: बड़ा
0: उम्मीद है
1: अच्छा
0: मुझे कि
1: टॉपिक
0: आप
1: है।
0: ये करते होंगे।
1: बिल्कुल मैम, मैं ये बोलती हूँ कि जो लोग हैं ना, वो ऐसा हम जरूर सुने जब गाड़ी चला रहे होते हैं, कारण क्या है, तब ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक सुनते हैं। मुझे लगता है ज्यादा करके लोग अपना ही लगा लेते हैं सिस्टम जो है, यूट्यूब या कुछ भी सुनते हैं गाड़ी चलाते हुए, और वो भी ऊंची आवाज में, जो नहीं सुनना चाहिए। अब मैं कहूंगी कि जो संयम है, पेशेंस है, वो तो घर में ही रह जाते,
0: जी
1: और
0: जी जी
1: साथ चलती कहाँ है,
0: हाँ, ये
1: क्योंकि
0: आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, संगीत का, म्यूजिक का। अक्सर हम देखते हैं, और ये मैंने ना अपने युवा साथियों के साथ ही ये देखा है,
1: सही
0: कई
1: सही
0: बार जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं, शीशे भी
1: सही
0: दोनों नीचे ही होते हैं, और
1: सही कहा,
0: इतनी जो आवाज़ है उस संगीत की, वो
1: बिल्कुल
0: इतना इतनी ऊंची होती है कि
1: बिल्कुल
0: आसपास के लोग जो हैं कई बार डर जाते हैं कि
1: बिल्कुल
0: आवाज़
1: मैम।
0: कहाँ से आ रही है।
1: हमारे नेबर जो कार लेके आते हैं, तो हमारी विंडोज जो कांच की लगा होता है ना पूरा, मतलब 5-6 फुट का कांच, वो पूरा ही।
0: हेलो हेलो जी, तो समृता जी से बात हो रही थी लेकिन फ़ोन कट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक संदेश सुन लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं किसी और श्रोता से बात करने की।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: तो दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है।

हेलो चंडीगढ़, हम जैसे बात कर रहे हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, सुंदर है, तो इसे सुरक्षित रखना भी ना हमारी ही जिम्मेदारी है। अब सड़क पर हम कुछ सेकंड की जल्दबाजी जब करते हैं ना, तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो जल्दी पहुंचने की होड़ में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा संयम हमें बरतना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और नियम जो हैं उन्हें हमें ज़रूर मानना चाहिए। बात कर रहे हैं आज हम इस प्रोग्राम में, सड़क पर संयम और सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ले लेते हैं अगली टेलीफोन कॉल। हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो चंडीगढ़। चलिए, जब तक हमारा कॉल मिलता है, एक गीत सुनते हैं।

0: ना ना श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी यूँ नहीं करना है कि आगे जो भी है आप उसे उड़ा देंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं। ये गीत हम इसलिए नहीं सुनवा रहे आपको कि आप इन गीतों पर अमल करें, इसलिए सुनवा रहे हैं कि इनको सुन के ना आप थोड़ा सा सोचें कि सावधानी बरतना सड़क पर कितना ज़रूरी है। अच्छा तो चलिए अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ हेलो चंडीगढ़, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं संजय बोल रहा हूँ, सेक्टर 13 चंडीगढ़ से।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी,
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में संजय जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद मैडम। ये एक तो हमें चंडीगढ़ वाले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, पंजाब से जो आते हैं ना कार चलाते हैं वो बहुत गलत चलाते हैं और वो एक्सीडेंट का कॉज क्रिएट करते हैं। मेरे को 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ, और जो गाड़ी का नंबर पंजाब का ही होता था, मतलब इनको थोड़ा सा ट्रैफिक वालों के लिए जब भी गाड़ी ये पंजाब से एंटर करते हैं या कैसे भी है, इनका थोड़ा सा इनको पता लगे कि भी सख्ताई है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं तो उस हिसाब से चलें।
0: अच्छा संजय जी,
1: ये पंजाब वाले बड़ा तंग करते हैं हमें।
0: हाँ। देखिए पंजाब वाले भी हमारे अपने ही हैं।
1: नहीं है तो अपने, लेकिन यहाँ आके वो ट्रैफिक में नहीं अपने बनते ना, चक्कर तो ये सड़क

0: पे आके नहीं अपने बनते। वैसे तो अपने चंडीगढ़ में भी सारे वासी अपने हैं, हरियाणा के भी अपने हैं, सड़क पे नहीं आकर अपने बनते।
1: वही मैं आपसे कह रही थी, पूरे देश में हम जितने भी लोग हैं, जितने भी राजे हैं, हम जितने भी नागरिक हैं, तो सबको ही इसके बारे में सोचना है, है ना। अब ये सही नहीं है कि आप अगर अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आप तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाएंगे, ज़ोर ज़ोर से संगीत बजाएंगे, और वहाँ के जो नियम हैं उनको आप फॉलो नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है।
0: एक मेरा पैदल चलने वालों के लिए है थोड़ा सा मैसेज कि जो जब पैदल चलते हैं ना सड़क के किनारे, तो वो उल्टे हाथ में चले ताकि सामने वाला ट्रैफिक हमें दिखाई दे, क्योंकि अगर हम सीधे रहा पीछे से ट्रैफिक आ रहा है और हम पैदल आगे को जा रहे हैं तो पीछे से कई बार वो गाड़ी टक्कर मार देते, इसलिए ऑपोजिट साइड से चलें ताकि सामने वाला ट्रैफिक दिखे और वो अपना पोजीशन ले सके, मतलब उस हिसाब से। ये ऐसा मेरे साथ तो हो चुका है एक बार, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो, बहुत साल पहले।
1: जी, चाहे पैदल चल रही हूँ, चाहे फिर हम कोई गाड़ी चला रहे हों, किसी वाहन में हों, बस ध्यान जो है ना हम सबका, वो सड़क पे ही केंद्रित रहना चाहिए और सड़क के आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं उन पर ही रहना चाहिए, तभी सुरक्षा हो रहेगी और सभी सुरक्षित रहेंगे। चलिए, आपने वक्त निकाला, फ़ोन किया, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं अपना।
2: सुनीता भगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
1: जी नमस्ते,
2: मैं सतीश कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
1: जी सतीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: आपकी मैडम आवाज बहुत कम आ रही है।
1: अच्छा जी,
2: चलो मैं बोलता
1: जी, अब ठीक है।
2: जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कुछ तुम भी चलो कुछ हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
1: जी आपने तो ये
2: दूसरों की जिंदगी का ख्याल रखे, साथ में अपनी जिंदगी का भी ख्याल रखे जी।
1: हाँ जी, वो तभी हो सकता है जब हम सड़क पर चलते समय थोड़ा संयम बरतें,
2: जो हाई स्पीड है ना ये बहुत जानलेवा सिद्ध होती है जी।
1: जी जी,
2: बाकी
1: जी,
2: हमें सड़क पे इंडिकेटर्स लगे होते हैं जी, उनको फॉलो जरूर करें। हाँ, सड़क पे इतने ज्यादा इंडिकेटर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, स्टॉप लाइन होती है, आगे पुल है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, सबका ख्याल रखें जी।
1: हाँ जी, हम यही कह रहे हैं बार बार कि नियम सबको पता है, कहाँ पे हमें क्या फॉलो करना है, कहाँ पे हमें किस तरह की सावधानी बरतनी है
2: जी। आंखें खोल कर गाड़ी चलाएं, अपना दूसरों का भी सुने, एम्बुलेंस अगर हॉर्न दे रही है, रास्ता मांग रही है, तो उसको रास्ता जरूर दें
1: जी। बिल्कुल, एक जिम्मेदार चालक बनना चाहिए हमें।
2: बाकी हमें संयम जरूर रखना, संयम तो सबसे बड़ी दौलत है इंसान की। जिसने संयम पाले समझो सब कुछ पा लिया जी।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इन बातों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो जाहिर है हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी सड़क पर सुरक्षित ही रहेंगे।
2: मैडम जी एक बात और है
1: जी,
2: जब हम कार चला रहे होते हैं ट्रक या बस वाले से ओवरटेक मांगते हैं, ट्रक का बस वाला हमें मना करता है भी आगे खतरा, आप ओवरटेक ना ले, जबरदस्ती ओवरटेक बिल्कुल ना ले, जब मना कर रहा है आगे वाला ड्राइवर तो हमें उसका कहना मानना चाहिए जी।
1: हाँ जी, बस यही बात है, तालमेल तो आपस में हमारा होना ही चाहिए जो भी हम सड़क पे होते हैं, चाहे पैदल चल रहे हैं चाहे गाड़ी चला रहे हैं।
2: सीट बेल्ट हेलमेट वगैरह हर चीज फॉलो करें जी।
1: बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी बात है
2: जी, आपने
1: बहुत धन्यवाद आपका। हेलो चंडीगढ़।
3: हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, कॉल कट गई थी, मैं कंटिन्यूएशन।
1: जी जी जी जी जी जी जी, कहें।
3: देखिए जो पेशेंस है ना वो घर से ही शुरू होती है, जैसे सुबह टाइमली उठें, अगर आप जॉब करते हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं, अपना नियम बनाएं, जितना आपके पास आप टाइम लेते हो तैयार होने को, उससे साहब से उसके हिसाब से निकलें और ब्रेकफास्ट करके चलें। कई बार क्या होता है कि अगर अनमैरिड है तो मदर बोलते हैं ये बेटा अपना ये डॉक्यूमेंट है जरूरी है रखे बैग में डाल के, रात से ही संभाल दिए इनको ले जाना, या फिर वाइफ है वो बोलेगी, या फिर वो बोलेंगे कि अपना ब्रेकफास्ट ही है खा लो
1: जी,
3: वो इतनी जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में तैयार होगा, मम्मी ब्रेकफास्ट तो वही कर लूंगा, जब घर में टाइम नहीं मिला तो वहाँ कहाँ होगा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी छूट जाते हैं।
1: जी जी जी जी,
3: तो बस इस चीज का ध्यान रखें, ऐसे गाने वगैरह या ना सुने, और पीछे एक।
1: हेलो जी, इनका कॉल फिर से कट गया है।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: हमारे श्रोता इस समय सुन रही हैं प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और हेलो चंडीगढ़ में हमारा आज का जो विषय है वो है श्रोताओं, सड़क पर हमें संयम रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, और इसी विषय पर हम आज अपने श्रोताओं से बात भी कर रहे हैं। चलिए लेते हैं इस प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो चंडीगढ़ मैम, सत श्री अकाल।
3: जी सत श्री अकाल, नाम बताएं अपना।
4: मैं रेडियो 2 सर्वेद अहमद सुकुलपुरा बनारस से आपसे बात कर रहा हूँ। मैम आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है।
3: अच्छा जी, बनारस तो बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक धार्मिक जगह है, तो बताएं।
4: हाँ मैम,
3: बनारस में हमारे जो श्रोता हैं और आपके आसपास के जो शहरी हैं, सब लोग यातायात के नियमों का पालन करते हैं, सड़क पर संयम।
4: जी जी मैम, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, यातायात के नियमों का पालन तो सभी लोग को करना चाहिए, और मैम बोर्ड पे लिखा भी रहता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
4: तो उसका जो है पालन करते हुए हमको चलना है। और सबसे पहली बात तो कि हेलमेट तो बहुत जरूरी है मैम, बहुत श्रोता भाई लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मैम, जो टॉपिक वाला आप लेके आती हैं।
3: बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारा प्रयास होता है कि हम उस तरह के विषय चुने, उस तरह की बातें लेकर आए, उन विषयों पर चर्चा करें अपने श्रोताओं से जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हों और जिनका फायदा जो है वो हमारे सब श्रोताओं तक पहुँचे।
4: जी जी मैम, एक बात बताना चाह रहा हूँ मैम, अभी अभी मेरे हरियाणा में एक दोस्त रहते हैं सुनील कुमार जी,
3: जी।
4: अभी वो जा रहे थे अपने काम पे और रॉन्ग साइड से आके जो कि बस वाला उनको जो मार दिया, और जो कि अभी इस समय जो कि हॉस्पिटल से आए हैं, घर हैं, अभी सुरक्षित हैं। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कभी भी कि अपने रॉन्ग साइड से ना चले, सभी का जो कि सभी को अपना समझे और सभी की देखभाल करे, किसी को ये ना हो कि आपके माध्यम से किसी को तकलीफ हो, किसी का घर और किसी की जान चली जाए।
3: जी, और यहाँ हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का काम जो लोग करते हैं उन्हें खुद से ही पूछना चाहिए कि क्या वो सड़क पर निकलने के काबिल हैं, क्या वो उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और आसपास के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे।
4: जी जी मैम, सभी को अपने जैसे ही निकले रोड पे सुरक्षा से चले और सबकी सबकी सुरक्षा लेके चले और रॉन्ग साइड तो ना चले, ये मेरा कहना है, और अपने सुरक्षा हेलमेट हुआ, सीट बेल्ट हुआ लगा के चले और सभी को सावधानी रखे। और सर मैम एक बात है, आज कल जो बारिश हो रहा है, बारिश में कभी कभी बीच में गड्ढे आ जा रहे हैं, उसमें तो थोड़ी सावधानी पूर्वक चले क्योंकि गड्ढे में गिरने से बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती हो जा रही हैं।
3: जी, यहाँ पर भी हम तभी अच्छे से सजग रह सकेंगे जब हम संयम बरतेंगे, है ना, तेज तेज जल्दी जल्दी नहीं जाना है, संयम रखना है और ध्यान से सड़क पर दृष्टि जमाए रखनी है और देख कर चलना है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है आगे।
4: जी जी मैम,
3: फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
4: आप फोन लग गया मेरा, आप रिसीव कर लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इसके लिए।
3: धन्यवाद आपका।
4: धन्यवाद मैम।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय हमारी श्रोता सुन रही है प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हम आज बात कर रहे हैं सड़क पर संयम और सावधानी बरतने की। हमारी श्रोता साझा कर रहे हैं हमारे साथ अपने विचार, अपनी बातें, कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो अगला जो कॉल है वो हम ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
6: हेलो
3: जी।
6: हेलो
3: हेलो चंडीगढ़।
6: हेलो चंडीगढ़ मैडम, मैं जम्मू से बोल रही हूँ, राका मेहता।
3: जी राका जी, स्वागत है आपका इस कार्य

0: जम्मी
1: जी मैम, मेरे को इतने श्रोताओं को मैंने पहले सुना और सबने अपने अपने विचार रखे। मेरा एक और व्यू पॉइंट है कि जब हम सड़क पर चलते हैं, वाहनों का तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे कार जा रही है या कुछ है तो वहाँ कोई ड्रिंक लेंगे, कुछ लेंगे, जो कैंस हैं वो फेंक देते हैं पेवमेंट की तरफ, जिससे कि इंजरी, जैसे मुझे कल रात ही इंजरी हुई है हाथ में, किसी ने फेंका। मैं वॉक कर रही थी इवनिंग में 8 बजे के करीब, तो मेरी कलाई पे लगा वो
0: जी।
1: तो मतलब जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें इन चीजों का, जो रोड मैनर्स जिसको कहा जाएगा, उनका भी ध्यान रखना है।
0: सिविक सेंस होती है एक, जो
1: जी जी
0: वो
1: जी,
0: होना
1: जी,
0: बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बार कई लोग कूड़े के लिफाफे फेंकते जाते हैं, कई लोग उस तरह, तो मतलब सड़क भी एक साफ सुथरी होगी तो ड्राइव करने वाला, वॉक करने वाला,
0: इसमें भी एक तरह का संयम चाहिए हमें। हमारा जो आचरण है वो संयमित होगा ना, तभी हम इन बातों की तरफ ध्यान दे पाएंगे।
1: जी मैम
0: जी मैम, राका जी
1: आपका प्रोग्राम्स बहुत सुनते हैं हम लोग, एंड सो नाइस ऑफ यू कि आप इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे कि जनता भी जागरूक होती है और हम भी अपने। वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है लोगों के, इसलिए लगते हैं इट्स बीन इयर्स दैट आई हैव बीन ट्राइंग।
0: जी
1: तो अच्छा लगा बात करके।
0: देखिए हमारे श्रोता जब हमारी सराहना करते हैं ना, हमारा जो प्रयास होता है उसको पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए एक अलग तरह का प्रोत्साहन जो है वो हम तक पहुंचता है और हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और श्रोताओं तक जानकारी पहुंचा रहे हैं,
1: जिससे कि अवेकनिंग आती है।
0: जी,
1: ये बहुत एक बड़ा, मैं चंडीगढ़ विविध भारती को एक श्रेय जाता है कि अवेकनिंग जो है एंड देन शेयरिंग ऑफ थॉट्स, जिससे कि हर किसी की नॉलेज पे इजाफा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है।
0: जी राका जी, आपने हमें कॉल किया, बात की हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, हैव अ गुड डे। थैंक यू,
0: सेम टू यू।

अब जब आप अपनी गाड़ी से इतना प्रेम करेंगे, अपने वाहन को इतना चाहेंगे, इतने सम्मान के साथ उसे रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आप सड़क पर भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ चलेंगे, उतनी ही सावधानी बरतेंगे, उतना ही संयम बरतेंगे ताकि आपकी गाड़ी को भी कुछ ना हो। तो भाई गाड़ी के लिए ही आप सावधानी बरत लीजिए ना सड़क पर, और इस तरह से आप अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे और साथ में जो

0: आसपास के लोग हैं उनकी सुरक्षा भी हो जाएगी। अच्छा, तो हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम चल रहा है, विषय है हमारा आज बहुत ज़रूरी है, सड़क पर संयम और सावधानी। तो अब सुनते हैं कौन से कॉलर हैं हमारे। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़,
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं अपना।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: बिल्कुल बताएंगे, नाम जब प्रोग्राम में आए तो नाम भी बताएंगे। नाम के लिए बताएंगे मैम।
0: तो चलिए बता दीजिए। अरे थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम बरतिए।
1: बिटना रोड।
0: जी जी जी, फिर से नाम बताएं।
1: मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, पिंजोर, बिटना रोड।
0: अच्छा जी, सुरेंद्र कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ जी, फैन।
0: अच्छा जी,
1: मजे में।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
1: हाँ जी बिल्कुल, शुरू से सुन रहा हूँ प्रोग्राम मैम।
0: कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम, पहले तो ये बताएं।
1: आज हमारी आपसे पहली बार बात हुई है मैम।
0: अच्छा जी, तो मेरी भी पहली ही बार आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है आपसे
1: बात। बिल्कुल, हमारी होगी तो आपसे भी हो रही
0: जी,
1: पहली बार ही हो रही है बात। आप
0: अच्छा, तो विषय पर आ जाएं अब हम।
1: बिल्कुल आएंगे जी, विषय पर ही आएंगे, विषय पर आएंगे मैम। देखो, जो वाहन है हमारा, ये हमारी रोड है, ये वाहन चलाने के लिए है, लेकिन इसे सही यूज करो। बहुत अच्छी हमें हमारे हिंदुस्तान में रोड दी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा मानता हूँ मैं तो, बहुत अच्छा मानता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा संयम बरते हैं और सही चले, और थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पहले चल जाए घर से तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि भीड़ हो, जाम हो जाता है 10-5 मिनट का, तो उसको कवर कर ले। इसलिए तो, और ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि थोड़ा ना फास्ट चलते हैं, टाइम हो जाता है तब घर ही रहते हैं, तो उस टाइम फिर चलते हैं निकल के, इनको चल बाइक लगा लेते हैं 100 की स्पीड से, और वो फिर जो है वो पंगा होता ही होता है।
0: और कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं हम कि जिंदगी भाई जो ईश्वर ने दी है बहुत अनमोल है, इसको बचाना है हमें।
1: एक एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई के साले का, हुआ कल परसों हुआ
0: जी,
1: और दो लड़के बैठे हुए थे बाइक पे, और इतनी तेज बुलेट थी उनके पास में, और वो बुलेट बाइक पे टक्कर मारी, और वो जो उसकी घरवाली थी वो दीवार में लगी, दीवार एकदम फट गया उसका।
0: चलिए, ये बहुत दुखद है, इसीलिए हम बार बार अपने श्रोताओं से विनती कर रहे हैं, सबसे ही कह रहे हैं कि आप जब भी सड़क पर हों तो अपने आप को थोड़ा संयमित रखें, थोड़ी सावधानी बरतें, ताकि हम सबकी जो सुरक्षा है वो
1: बिल्कुल सुनिश्चित। देखो, हमारी हमारी हमारी जो सुरक्षा है, हमें दूसरे की भी जान प्यारी है, हम अपनी भी जान प्यारी है, क्योंकि दूसरा भी घर जाएगा।
0: देखिए, जिम्मेदारी भरा ये काम है, तो ये जिम्मेदारी अगर हम ले लेना तो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें।
1: देखो, हम एक्टिवा चलाते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड ना रखें
0: जी,
1: थोड़े देखो, दूसरा बच्चे को साथ लेके चलते हैं आजकल, तो उनका भी ध्यान रखो, ऐसा ना करो, इतना वो ना करो, बिल्कुल फास्ट जिंदगी ना रखो
0: जी, अपनी जिंदगी का हमें खुद ही ध्यान रखना है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा हमें, धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप?
2: मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूं।
0: अच्छा जी, फिर से हम हिमाचल पहुंच गए हैं ठंडी ठंडी हवाओं में, बताएं कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
2: बहुत बढ़िया मैडम जी, और ये जो मौसम की बात कही आपने, बस हल्की हल्की बदली है, और ऊपर पहाड़ों में जो है वो बड़ी एडवांस इस बार बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ठंड जो है वो जल्दी सर्दियां शुरू हो गई।
0: हाँ, दबे पांव से, दबे पांव से पहाड़ों की ओर तो ठंड धीरे धीरे धीरे बस आ ही रही है ना
2: जी, जी।
0: अच्छा, तो हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ना और भी जरूरी हो जाता है कि हम बड़े संयम से, बड़ी सावधानी से वाहन चलाएं, और वहां पे पैदल भी बड़े तरीके से चलना पड़ता है ना। लीजिए, हिमाचल वाले जो हमारे श्रोता थे उनका कॉल तो कट हो गया, तो समय भी हमारे पास कम है, तो एक कॉल हम और ले सकते हैं। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो मैम,
0: जी जी।
3: हाँ मैडम, मेरे छोटा सा दो पॉइंट है कि जनरली क्या होता है कि जब ट्रैफिक लाइट में 3-4 सेकंड रह जाती है तो हम लोग थोड़ा सा इंपेशेंट हो जाते हैं और थोड़ा फास्ट निकलने की कोशिश करते हैं।
0: जी, सही तो कहा आपने,
3: डेंजरस पॉइंट है,
0: और बहुत अफरा तफरी हो जाती है उस समय।
3: हाँ जी, हाँ जी,
0: है ना,
3: वो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी।

0: हाँ जी,
1: और
0: अफरा तफरी हम ना करें।
1: सेकंड पॉइंट है कि मैडम कि जैसे जनरली कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी व्हीकल हमारे पीछे से आ रहा है तो थोड़ा सा तब कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लेफ्ट हो जाए कि राइट हो जाए, हमारे अगर स्पेस है राइट में तो हम राइट में होने लगते अपने गाड़ी को हम बचा देना चाहते हैं।
0: देखिए जो जो ट्रैफिक नियम है ना तो उसमें तो हमें लेफ्ट की तरफ ही चलना है, तो एम्बुलेंस जो है चूंकि किसी जीवन का सवाल होता है तो हो सकता है वो दूसरी साइड से निकले, बट फिर भी आपको अपनी ही साइड पे जाना चाहिए और तुरंत उसे आगे जगह देनी चाहिए।
1: हाँ, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमने इन एनी केस लेफ्ट ही होना है,
0: जी
1: हमारे राइट में जगह स्पेस भी है लेकिन अगर हमें लेफ्ट ही होना है तो उसको क्या कि उसको मैंडेटरी हो जाएगा कि वो राइट साइड से निकल जाएंगे।
0: जी जी जी,
1: अदरवाइज वो कई बार कंफ्यूजन उसका टाइम वेस्ट हो जाता है एम्बुलेंस।
0: चलिए आप भी सावधानी बरतते हैं ना सड़क के ऊपर।
1: बिल्कुल डेफिनेटली मैम।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
2: ए भाई दर्द।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: जी तो दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है ना, और हर सफर हमें सुरक्षित घर लौटने की याद भी दिलाता है। तो आज क्यों ना आप ही एक संकल्प ले लें, खुद भी हम सड़क सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, संयम बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे सड़क पर, और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो आपका आज का दिन सुरक्षित रहे, सड़क पर बिल्कुल संयमित रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। इसी अच्छी बात के साथ हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम आज हम यहीं पे समाप्त कर रही हैं। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

हमारे श्रोता सुन रही थी प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। ये आकाशवाणी है, आप सुन रही हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का शारीरिक शोषण, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अनुसार 50% बच्चे इस हादसे के शिकार हैं और ये समस्या बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और ज्यादातर इस समस्या को दबाई जाती है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें और अगर आपके बच्चे इसके शिकार हैं या विक्टिम हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।

तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, शारीरिक शोषण होता क्या है। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सबसे कॉमन वे या सबसे साधारण तरीका ये है कि कोई भी आपके बच्चे को गलत जगह छुए, और ये किसी को भी हक नहीं कोई आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे छुए। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई उनके होंठों पे, उनके छाती पे, टांगों के बीच में या पीछे उनको छुए, तो वो आपको बेझिझक बताए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, वो अलग बात है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही है या उनके कपड़े बदल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग कारण नहीं कि आपके बच्चे को कोई इन जगहों पे छुए। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तब भी हो सकता है अगर कोई आपके बच्चे को कहे कि आपका बच्चा उनके सामने अपने कपड़े उतारे, या वो आपके बच्चों के कपड़े उतारे, या वो खुद अपने कपड़े उतारे और आपके बच्चे को कहे कि देखें, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके बच्चों को दिखाएं, या किसी तरह की पोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें आपके बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, ये सारी बातें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, शारीरिक शोषण में सम्मिलित है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि ये सारी चीजें गलत है, और कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे आपको आकर बताएं।

एक और बात जो महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि शारीरिक शोषण या चाइल्ड अब्यूज, इसके शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं। कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई बहन हो या आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। किसी को भी ये हक नहीं है कि एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता-पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता-पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाए, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके और सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बच्चे कभी-कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1098 जिसपे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है और वहां से 1 घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

तो दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो माता-पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता-पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए, बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताई।

आकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता-पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें, और यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और दोस्तों, बच्चों के सामने समाज के बारे में, भविष्य के बारे में प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है, और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से क्यों मिले? सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है? वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा? जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए, और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

0: तो श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
4: श्रोताओ, अब समय हो गया है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
4: श्रोताओं, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और लेकर हाजिर हो गई है आपकी दोस्त मोनिका ठाकुर आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। अभी से लेकर ठीक 12 बजे तक आपके पसंदीदा गीतों से सजा सवरा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। और अगर आप अपनी फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप लिख भेजिए फिल्म का नाम, गीत के बोल और अपना नाम। और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है आकाशवाणी चंडीगढ़। हमें आपके जितनी भी फरमाइश रहती है कार्यक्रम हम 10 बजे पोस्ट डाल देते हैं ताकि आप इजीली जो भी आपकी पसंद का गीत है वो हम तक भेज सकें और सिलसिला शुरू हो जाता है। एक रिक्वेस्ट अपने तमाम लिसनर से हमारी रहेगी कि जब भी वो अपना नाम लिख भेजें तो 5 से ज़्यादा अगर वो नाम ना लिखें तो हमें पढ़ने में भी आसानी रहेगी और ज़्यादातर लिसनर्स के नाम हम कार्यक्रम में शामिल भी कर पाएंगे। कोशिश रहेगी जितने भी लिसनर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी की जाए और किसी का भी दिल ना दुखे। तो कार्यक्रम की शुरुआत में वैसे तो बहुत सारी जो फरमाइशें हैं हम तक पहुंच चुकी है और जो पहली फरमाइश हम तक पहुंची है वो आई है मंचली फिल्म के लिए। इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ने, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। तो आपकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: पहले क्या था मैं बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ पति ने, उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा किया, जीना सिखाया, हंसना सिखाया, दर्द को लेना सिखाया।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,

0: आप सुन रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम और कार्यक्रम का ये गीत आपको सुनवाएंगे लेकिन इस संदेश के बाद।
1: हम सब ने मिलकर ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है। सब रोगों की एक ही दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई।
2: अच्छा जी,
3: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा
3: सर।

0: बनाएं MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर अपने गाँव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम और कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म है जाने मन, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने।
2: मैं क्या जी की गल है?
3: कोई नहीं जी, कोई नहीं।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गाँव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।
2: श्रोताओं, अब आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 11:30 हो चुके हैं और आधा ही घंटा हमारे पास इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए बचा है, तो अपनी फरमाइश भेजने का सिलसिला थाम लीजिए ताकि जितनी भी रिक्वेस्ट हम तक पहुंची है आपके पसंदीदा गीतों की, उनको

चला सकें। तो अगली रिक्वेस्ट हम तक पहुंची है धर्मात्मा फिल्म के लिए। ये गीत आप सुनेंगे मुकेश और कंचन की आवाज़ों में, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनना चाहा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ने। इसके अलावा रेडियो श्रोता संघ अम्भई, तहसील सिल्लोड, जिला छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के के लिए भी यही गीत हम भेज रहे हैं।

चलिए कदम और बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम में और अब आप सुनेंगे पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत को सुनना चाहा है रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी ने सेक्टर 9 पंचकुला से। इसके अलावा पंचकुला से ही सेक्टर 9 से आशु चुघ, अश्विनी चुघ, गोविंद चुघ, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ठिंगरा पंचकुला सेक्टर 11 से, अतुल शर्मा सुनना चाहते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पंचकुला सेक्टर 21 से मोहम्मद अनस मोहम्मद अरहान की। ये सुनना चाहते हैं दिल का रिश्ता फिल्म का टाइटल गीत, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक, कुमार शानू और उदित नारायण ने। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी सुनना चाहते हैं नमकीन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

0: मिलते हैं, कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
1: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे उमा देवी की आवाज में दर्द फिल्म से गीत। संगीत दिया है नौशाद ने। इस गीत को सुनना चाहा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब सिंह राहुल। तो लीजिए, आपकी पसंद पर आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं ये गीत।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश हम तक पहुंची है आई मिलन की बेला फिल्म के लिए, जिसमें लता मंगेशकर को आप सुनेंगे। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है पंचकुला से और इन्होंने अपना नाम नहीं लिख भेजा है, तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी करते हैं और गुजारिश रहेगी कि अपना नाम और पता बिल्कुल साफ साफ आप लिखें ताकि हमें पढ़ने में मजा आए और आपको सुनने में।

श्रोताओ, अब आप सुनेंगे कुमार शानू को आशिकी फिल्म में संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनना चाह है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने।

अगली रिक्वेस्ट हम तक पहुंची है क्रिमिनल फिल्म के गीत के लिए। आवाजें हैं कुमार शानू अलका याग्निक की, संगीत दिया है एमएम करीम ने। इस गीत को सुनना चाहा है ललिता पाल, हुकुमचंद, ईशु, वन्नीशु, दुधला, मंडी अम्बाला, कैंट से।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफी इस कार्यक्रम का अंतिम गीत कुमार शानू और राधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दाग द फायर से। संगीत दिया है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद आतिफ, असलान बाबू, सेक्टर 25 पंचकुला से ये सुनना चाहते हैं।

0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में आपने अपनी फरमाइश भेजी और इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब इस कार्यक्रम से मोनिका ठाकुर चाहती है इजाजत, अनुमति दें, नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
3: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में

0: एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
0: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: सुरीली धड़कन थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

कार्यक्रम का पहला गीत 100 डेज फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। दिलीप ताहिर का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। पार्श्व गायक SP बाल सुब्रमण्यम की पुण्यतिथि पर हम यादों की महफिल कार्यक्रम में उन्हें याद कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए गीत। अगला गीत हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है, नौशाद ने संगीतबद्ध किया है, गाया है SP बाल सुब्रमण्यम ने। तेरी पायल मेरे गीत फिल्म का नाम।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को। रोजा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में माफ कीजिएगा, पी के मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और ए आर रहमान ने संगीत पर किया है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
5: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
7: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
5: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। एसपी बालासुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अगला गीत समीर के बोल, आनंद मिलिन का संगीत, फिल्म का नाम प्रेम कैदी।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के

0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
5: 10, 9, 8, 7
4: हम आपके हैं कौन, ये है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजें।
5: 2, 1 लेट्स स्टार्ट द फन।
4: रविंद्र रावल का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया

0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस वक्त साजन फिल्म का गीत, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है।

पत्थर के फूल फिल्म से गीत अभी हमने आपको सुनवाया। अगला गीत सुनवा रहे हैं हमसे है मुकाबला फिल्म से। पीके मिश्रा के का लिखा गीत है, यार रहमान का संगीत है और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़, साथ ही पल्लवी और उदित नारायण ने साथ दिया है।

एसपी बालासुब्रमण्यम, पल्लवी और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीके मिश्रा ने इसे लिखा था, एआर रहमान का संगीत था। हमसे है मुकाबला, ये था फिल्म का नाम। अब है कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैंने प्यार किया। इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: इसी गीत के साथ यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को याद करते हुए उन्हीं के गीत सुनाए कार्यक्रम यादों की महफिल में।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

0: वर्वन मनोरंजन चैनल विविध भारती।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप हमारे केंद्र से सुनते हैं और यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी।

समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 11 बजे

अमृत वाणी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार और उसके बाद कुछ पंजाबी गाने और इसी तरह से रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए। विविध भारती के कार्यक्रमों में दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे सुरीला सफर, 2 बजे प्रोग्राम वंदे मातरम, 1 जय

खुश। 2:30 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम सदाबहार नगमे। 3 बजे फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली, महिलाओं के लिए ये फोन इन प्रोग्राम। टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे आज आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, और आज की कहानी है दो दीवाने शहर में। 8:00 बजे प्रोग्राम हवा महल में सुनिए डॉक्टर शमसुद्दीन की लिखी नाटिका मान की मृत्यु। 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम एसपी बाला सुब्रमण्यम पर केंद्रित है, पार्श्व गायक। 10:00 बजे प्रोग्राम छाया गीत। 8:15 पर चित्रलोक। 9:00 बजे आपके लिए

0: ये थी जानकारी हमारे आज के बाकी के कार्यक्रमों की। कुछ कार्यक्रम जो हमारे यहाँ से आपके लिए पेश किए जाते हैं और कुछ कार्यक्रम जो विविध भारती मुंबई से हम रिले करते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी,
3: चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: उन्होंने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दिखाए मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस करता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय की जीरकपुर में एक जगह पर दिव्यांगों के लिए एक व्यापक पुनर्वास केंद्र बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिलेंगे और मंत्रालय से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ उस जगह की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग पूरे देश के लिए एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। मंत्रालय नशों के बारे में जागरूकता लाने के लिए काम कर रहा है।
4: नशा पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर

0: इससे जो नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था, मंत्रालय भी उसमें लगातार काम कर रहे हैं। पहले 100 जिलों को लिया गया, अब सारे जिलों को जहां जहां नशे से प्रभावित लोग हैं उनको कैसे नशे की आदत से बाहर लाया जाए, मुख्य धारा के साथ में उनको जोड़ा जाए ताकि उनकी एनर्जी का प्रदेश के विकास में, देश के विकास में योगदान जोड़ा जा सके।
1: एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे झूठ और नकारात्मकता की राजनीति में विश्वास करते हैं। किसी चीज का विरोध करने के लिए विरोध करने की बजाय सकारात्मक सोच और देश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करने और इसे ज्यादा नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में सतर्क हरियाणा मोबाइल ऐप लॉन्च की। यह ऐप नागरिकों को अपने मोबाइल फोन के जरिए सीधे राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें और जानकारी देने की सुविधा देगा। इसके अलावा यह ऐप राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की हेल्पलाइन से सीधे जुड़ने, डिजिटल सबूत अपलोड करने, किसी खास जिले में संबंधित एसीबी अधिकारी की जानकारी और लोकेशन पाने और नियमों के अनुसार उपलब्ध होने पर एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा भी देती है। मोबाइल ऐप की एक अहम खासियत यह है कि नागरिकों को ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर याद नहीं होने पर सीधी हेल्पलाइन सुविधा देकर इस समस्या का समाधान करना है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। केंद्रीय समाजिक न्याय ते सशक्ति मंत्री वरिंदर कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थों की दुरवरतों पूरे देश लिए एक वड्डी समाजिक चुनौती है। नशा मुक्त भारत बनाने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे नाल जूझ रहे लोगों की मदद करने ते उन्हां नूं मुख्य धारा विच शामिल करने लिए नशा मुक्त भारत मुहिम शुरू की है ता जो वह सूबे अते देश दोवां दे विकास लिए अपनी ऊर्जा का योगदान पा सकन। अज चंडीगढ़ विच मीडिया नाल गलबात करते हुए मंत्री ने कहा कि इस उद्देश नाल भारतीय जनता पार्टी सूबे च नशा मुक्त पंजाब यात्रावां कढ रही है। भाजपा के कौमी प्रधान नितिन नवीन द्वारा 18 सितंबर को पठानकोट ते बाद विच होर सीनियर भाजपा नेतावां अते केंद्रीय मंत्रियों द्वारा 4 पड़ाव शुरू की गई यात्रावां लोगों नूं नाल लैके नशे अते भ्रिष्टाचार विरुद्ध जागरूकता फैलाउण की अपनी मुहिम नूं जारी रखणियां ने। सूबे विच विगड़दी कानून व्यवस्था की स्थिति एक होर गंभीर चिंता का विषय है। ये यात्रावां 30 सितंबर को जलंधर विखे समाप्त होणगियां। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन सूबे के उन्हें 3763 पिंड के सर्वपक्षी विकास और समूहिक विकास लिए 750 करोड़ रुपए तो वे व्यापक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इतने अनुसूचित जाति एससी वर्ग की आबादी 40% तो वे समाजिक न्याय अधिकारता और घट गिणती विभाग के कामकाज की समीक्षा लिए मीटिंग की प्रधानगी करद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहलकदमी समाजिक न्याय से इन्होंने पिंड के सर्वपक्षी विकास में वड्डा हुलारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेक पिंड को शुरू में बिना किसी शर्त के 20 लाख रुपए का फंड जारी किया जाएगा। पीएयू कृषि विज्ञान केंद्र श्री मुक्तसर साहब वालों गिदरवाह झोने की पराली के सुचजे प्रबंध संबंधी ब्लाक पद्धरी जागरूकता कैंप लगाया गया। इस कैंप में ब्लाक के वक् पिंड लगभग 120 सूझवान किसान वीर ने भाग लिया। कैंप दौरान सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार ने किसानों पराली साड़न के माड़े प्रभावों बारे जागरूक किया। इस तरह फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने कहा कि पराली अग लगाने की घटनावां रोकने लिए जिला प्रशासन वालों कोई भी ढिल नहीं वरती जाएगी। खेतीबाड़ी विभाग की हिदायत की गई है कि इसलिए वध तो वध किसानों जागरूक किया जाएगा। पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल ने बीते दिन एक महिला वालों एसजीपीसी मैंबर ते होरां खिलाफ लगाए गए कथित जबर जनाह के इल्जाम मगरों उस महिला की पछाण उजागर करने के दोष का सोह मुट लेंदे हुए पंजाब पुलिस नूं कल तक रिपोर्ट दाखिल कर लई कहा है।
3: टीवी दे उत्ते न्यूज़ देखी सी, ओदे उत्ते बलटोआ जी ने किसी लेडी दे बारे, ओदे कैरेक्टर दे बारे, ओदे काम दे बारे जड़े बड़े अपशब्द बोले गए सी, जड़े की विदाउट सबूत विदाउट कुछ भी पेश कीते हुए इस तरीके दे नाल कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और एदे खिलाफ असीं एक सो मोटो लियाया और ओदी रिपोर्ट जड़ी असीं कल तक मंगी हैगी पुलिस कोलों, ते ओ रिपोर्ट आ जांदी उस बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप की होए।
2: खजाना मंत्रालय ने सूचित किया है कि सारे जनतक खेत्र के बैंक और खेतरी देहाती बैंक एतवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम बैंक यूनियन की संयुक्त फोरम वालों 28 तो 30 सितंबर तक बुलाई गई तजवीजशुदा 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर चुकया गया।

0: अभी आपने नितिन मुकेश को सुना, ये फिल्म थी दरिया दिल।
1: हम सबका यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना।
0: फिल्म संगीत में अगला गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं और कर ही रहे हैं। ये गाना है ये दिल लगी। इस फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गाना। संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन और गीतकार समीर।

0: ये दिल लगी फिल्म से अभी आपने लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में गीत को सुना। गीत को लिखा समीर ने, संगीत था दिलीप सेन और समीर सेन का।
1: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।

संगीतकार हैं हरीश जयराज। फिल्म संगीत का आखिरी गाना है ये।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के आखिर में सोनू निगम और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाजों में रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म का टाइटल गाना।

0: रहना है तेरे दिल में, अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना और यही था आखिरी गाना फिल्म संगीत का। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
4: अब आ रहा है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात। भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफर मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूँ और कहता हूँ जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियाँ और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है, बिल्कुल। एक श्रोता कह रही है, प्यार में पसंद नापसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी है। जी हाँ, हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु

दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। प्यार जीवन में जरूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूँ। तेरी सूरत पर नहीं, मैं तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो एक उभरती गायिका रही हैं, जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था, तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वी जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए, चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता था। उनके लेदर बूट्स, हैट्स, सिगार और वेस्टर्न लुक ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट किया था। बिल्कुल। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें लिख भेजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी शादी के पहले मैंने पत्नी से 1 साल प्यार किया, 1 साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी, प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई, हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूँ, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूँ, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीतबद्ध किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूँ। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की करते हैं, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। भाई बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए।

एक श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हो, हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है।

हमारी एक श्रोता हमको हमसे साझा कर रही हैं कि क्या खूब लगती हो ये गीत, हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बज चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फिरोज खान साहब की बहुत शानदार फिल्म रही है और इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन अफगानिस्तान में किया गया था। पूरी एक टीम एक महीने से ज़्यादा वहाँ पे रही थी। जी धन्यवाद ये बात साझा करने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह क्या गलत फहमी है, दूसरा पहला और पहला दूसरा गीत। क्या कहना चाहते हैं आप? एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया था, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नज़र सबके पास नहीं होती, और ज़िंदगी में वो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना ज़िंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती से, वो भी कई सालों से। जी, विविध भारती से तो आपका प्यार चलते ही रहना चाहिए।

एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है, और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने विनम्रता के हथियार से समस्त संसार की झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

0: एक श्रोता ने कहा है कि थोड़ी देर के लिए जरूर, पर हमेशा के लिए तो सीरत से ही प्यार होता है। बिल्कुल सही फरमा रही है आप भी।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला सफर सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान की फिल्मों की ही बात हुई है स्मृति दिवस पर। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हीं के गीत आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहाँ हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकें। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाज़त लेती हूँ मैं, पूजा नारानिया, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 47वीं कड़ी।

स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रसंग, आने वाले समय में राष्ट्रगीत कौन सा होगा, इस विषय में आम लोगों के या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं था। मानो वंदे मातरम ही राष्ट्रगीत

होगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का नेतृत्व करने वाले और सभी के मन में आदर का स्थान रखने वाले महात्मा गांधी की इस बारे में भूमिका अभी स्पष्ट होनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गाए गए वंदे मातरम का प्रभाव उनके मन पर स्थायी रूप से रहा था। 29 अक्टूबर 1947 को गांधी जी की दिल्ली में हुई प्रार्थना सभा में श्री अरविंद के अध्यात्म मार्ग के शिष्य और गायक दिलीप कुमार रॉय ने अपनी संगीत रचना में वंदे मातरम का गायन किया। अब सुनिए दिलीप कुमार रॉय के स्वर में वंदे मातरम की वो संगीत रचना जो उन्होंने बंगाली लोकगीत शैली में गाई थी।

वंदे मातरम इस गीत के प्रति दिलीप कुमार रॉय को असाधारण आत्मीयता थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण हिंदुस्तानी और उत्तर हिंदुस्तानी भारत की दो मुख्य गायन पद्धतियों में जुगलबंदी या सहगायन के रूप में संगीत रचना बनाई। भारत रत्न M.S. सुब्बुलक्ष्मी और स्वयं दिलीप कुमार रॉय ने ये गायन किया था।

0: भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी संविधान सभा की अंतिम बैठक अभी होनी थी। राष्ट्रगीत कौन सा हो, इस विषय पर चर्चा शुरू थी। पंडित नेहरू की पहल पर रविंद्रनाथ के जन गण मन गीत का राष्ट्रगीत के लिए आग्रह किया गया। वंदे मातरम में राष्ट्रगीत के अनुरूप या अंतरराष्ट्रीय समूह में बजाई जा सके ऐसी संगीत रचना नहीं है, ऐसा एक मुद्दा रखा गया था। उसका समाचार पढ़कर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम करके एक संगीत विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रगीत के बारे में मेरे विचार लिए जाएं, ऐसी विनती की।
1: मास्टर कृष्ण राव फुलंब्रीकर। मराठी संगीत नाटक, शास्त्रीय संगीत और नवागत फिल्म संगीत के क्षेत्र के एक बड़े व्यक्तित्व थे। पंडित भास्कर बुआ बखले की सांगीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले मास्टर कृष्ण राव एक प्रयोगशील संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1936 के आसपास प्रभात फिल्म कंपनी में संगीत निर्देशक के रूप में काम करते हुए वी शांताराम की पहल पर मास्टर ने स्वयं अपनी झिंझोटी राग की रचना प्रभात के स्टूडियो में ही ध्वनिमुद्रित की थी। उस समय के फिल्म संगीत की संगीत रचना के अनुसार ही उसमें वाद्यों का उपयोग और ऑर्केस्ट्रेशन किया गया था।

संगीत भी दिया था। संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम गायन की जो परंपरा थी वह संगीत रचना भी मास्टर की ही थी। आगे चलकर छोटा गंधर्व जैसे प्रसिद्ध गायक अभिनेता, जयराम और जयमाला शिलेदार परिवार, राम मराठे जैसे गायक अभिनेता अपने संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम का गायन करते थे। छोटा गंधर्व द्वारा संगीत सौभद्र इस नाटक के अंत में नांदा सौख्य भरे इस पद के साथ जोड़कर गाया गया वंदे मातरम का ये ध्वनि मुद्रण आप सुनिए।

0: मास्टर कृष्णराव झिंझोटी राग में निबद्ध वंदे मातरम का गायन अनेक बड़े कार्यक्रमों में करते थे। परंतु आकाशवाणी पर वंदे मातरम गायन की अनुमति नहीं मिल रही थी। अंत में मास्टर कृष्णराव ने सीधे प्रसारित हो रहे आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम में झिंझोटी राग के नाट्य पद को जोड़कर बिना रुके वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। ये ध्यान में आते ही स्टेशन डायरेक्टर बुखारी ने तुरंत विद्युत प्रवाह बंद कर दिया। वंदे मातरम का गायन रोके जाने के विरोध में मास्टर ने आकाशवाणी पर बहिष्कार कर दिया। आगे 10 साल बाद 1947 में चैत्र पाड़वा पर वल्लभ भाई पटेल के निमंत्रण पर आकाशवाणी पर बुखारी की ही उपस्थिति में वंदे मातरम गाकर बहिष्कार वापस लिया। बीच के काल में 1942 के 8 अगस्त को मुंबई के भारत छोड़ो आंदोलन की सभा में मास्टर कृष्ण राव ने ही वंदे मातरम गाया था, इसलिए फिर एक बार वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए मास्टर ने प्रयास शुरू किए।
1: मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम किया। उसका उत्तर आया, पंडित नेहरू और अन्य संसद सदस्यों के सामने प्रदर्शन दिखाने की अनुमति मिली। उसकी पूर्व तैयारी के रूप में मास्टर स्वयं पुणे के पुलिस संचालनालय की पुलिस परेड के साथ खुद कदम मिलाकर मार्च पास्ट की दृष्टि से इस संगीत रचना की उपयोगिता को परख रहे थे। दिल्ली में जनरल करियप्पा के सामने और पंडित नेहरू के सामने उसका प्रदर्शन हुआ। मिलिट्री बैंड के प्रमुख लजपत सिंह ने उसे बजाकर देखा और उसकी सफलता की गारंटी दी।

परंतु यह राष्ट्रगीत दुनिया के अन्य देशों के घोष दलों को भी बजाना आना चाहिए। पाश्चात्य संगीत रचना से भी उसकी निकटता हो, ऐसी सूचना मिलने के बाद मास्टर कृष्ण राव मुंबई आए और नायगांव के पुलिस मुख्यालय के ब्रिटिश संचालित घोष विभाग के प्रमुख सी आर गार्डनर के सहयोग से विदेशी पद्धति की स्वर रचना में मूल धुन को धक्का न लगाते हुए घोष पर अभ्यास किया। नेविल बैंड के प्रमुख स्टैनले हिल्स ने ब्रास वाद्यों पर यह संगीत रचना तैयार की। इन दोनों पाश्चात्य संगीत विशेषज्ञों ने मास्टर कृष्णराव की संगीत रचना के बारे में अत्यंत अनुकूल मत और अभिप्राय दिए। इसलिए अत्यंत उत्साह से मास्टर कृष्णराव ने संविधान सभा और पंडित नेहरू

0: से फिर से नए प्रदर्शन की अनुमति मांगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 47वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम के दुर्लभ ध्वनि मुद्रण मिलिंद सबनिस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण

0: राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
0: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के 4th संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर

करने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90

0: नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
1: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस

0: योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला LPG रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
2: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्ते। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत बत इस गीत को किया है रवि ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदा बहार नगमे। जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ऊंचे लोग इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल चित्रगुप्त की बनाई धुन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत। फिल्म का नाम है वापस।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सबकी जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। तो आइए आज की इस खूबसूरत मुलाकात में कुछ बातें दिल से करें जो दिल तक पहुंचें, कुछ अनुभव साझा करें और शायद उन बातों में से किसी की एक छोटी सी बात किसी दूसरे के दिन को बेहतर बना दे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ, आपकी आवाज और आपकी बातें इस कार्यक्रम को बनाती हैं खास। तो देखते हैं जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। तो बताइए, आप कौन
1: जी?
0: बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मध्य प्रदेश से अंजुम परवीन, मंदसौर जिले से।
0: अच्छा, तो अंजुम जी बताइए, कुछ अपने बारे में बताएंगे आप पहले?
1: बस हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। पेरेंट
0: अच्छा।
1: नर्स का कोर्स कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल में सर रही।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी मम्मी है, बहन है।
0: ये बताइए कि आप मम्मी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं कि नहीं, या फिर मम्मी गुस्सा
1: जी
0: करती हैं?
1: नहीं,
0: जी
1: मम्मी आटा गूंथती है तो रोटी बना देती हूँ, सब्जी मम्मी बनाती है, बर्तन वर्तन कर देती हूँ, कपड़े ये सब
0: ये
1: घर पे
0: चीज
1: रहती हूँ तो।
0: ये चीज
1: और
0: तो
1: एक
0: होनी चाहिए।
1: सर्विस करती है तो फिर घर का काम करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी चाहिए वैसे भी, है ना? मम्मी अगर घर का काम कर रही, कोई भी कर रहा हो, चाहे बहनें भी कर रही हो या कोई भी कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत हम अगर हाथ बटा देते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है और लगता है मम्मी को, हाँ मेरी बेटी देखो मेरे काम
1: जी
0: में हाथ
1: मैम,
0: बटाती
1: जी
0: है
1: मैम।
0: ना। अच्छा बताइए, तो आप आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जी फिल्म है उस्ताद ही उस्ताद से, और
0: अरे
1: गाना है साथी तेरे नाम एक दिन
0: वाह,
1: जीवन कट जाएंगे।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ जी मैडम,
0: आज
1: हाँ
0: कौन,
1: बोल।
0: हाँ जी, कौन सी सहेली से मेरी बात हो रही है पहले ये तो बताइए।
1: हाँ मैं मकवाना रमीला बेन बोल रही हूँ, इंदरपुरा
0: अच्छा
1: गांव से।
0: तो बताइए रमीला बेन जी कि आप क्या करती हैं।
1: अभी तो मैं घर पे हूँ, मगर अगली बार फोन लगा, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो मैं बोली गीत सुना।
0: अच्छा, तो आपके बेटे का बर्थडे आज। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेज हैं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आपके बेटे के लिए। तो रमीला बेन जी, जी बताइए। हाँ
1: बेटी का नाम है आरती
0: हाँ अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो बेटी हैं और बेटे हैं, आपके काम में, आपके घर के काम में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं कि नहीं।
1: अभी लड़की तो मेरी 30 साल की हुई, मगर मन बुद्धि चलती नहीं ऐसी है।
0: अच्छा,
1: और लड़का है ना, वो तो अभी शादी हो गई, लड़की है, सिटी में रहता है, बड़ोड़ा में
0: अच्छा अच्छा
1: जॉब करती है लड़की की मम्मी,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: वो लड़का दोनों।
0: ये
1: हाँ
0: बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का और कौन सा गाना सुनना है।
1: मुझे दिल का क्या कसूर का, ये
0: अच्छा
1: पार्टी का।
0: अच्छा आपकी पसंदीदा हीरोइन का, तो चलिए आपकी
1: हाँ
0: पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ, राधिका कुर्मी।
0: तो राधिका जी ये बताइए कि आप करती क्या है?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं, कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: 9th में, यानी कि आप अभी
1: जी
0: अभी 10th तक पहुंची नहीं है, तो 10th
1: जी
0: की तैयारी में है ना, तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी दीदी, मैं दीदी हम दिव्यांग है, तो दीदी हम लोग संगीत सीखते हैं, तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस। दीदी हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, दीदी वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु,
0: अच्छा,
1: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी, कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
0: अच्छा तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
1: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है तो हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी, वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी,
0: हाँ ये तो
1: वही
0: है।
1: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
0: अच्छा
1: दीदी सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी
0: तो
1: दीदी,
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज
0: और
1: और
0: गाना
1: गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: ठीक है, तो सुनवाती हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, कौन व हवन सामग्री।
1: ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
2: नहीं डर लगता।
1: नहीं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
2: है। नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं, नहीं नहीं डरती मैं।
1: नहीं,
2: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती।
1: अरे वाह,
2: किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
2: नहीं, नहीं, नहीं डरते, वो बहुत जने डरते हैं।
1: हाँ, क्योंकि कभी सफाई करते हैं ना घर में।
2: डरती मैं
1: जी, है ना। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
2: आप तो ऐसे मत है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
2: शुक्रिया हमारी फरमाइश,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मेरा नाम शिवाती, गांव गोसगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: तो ये बताइए आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा।
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप?
1: हाँ जी, अभी तो स्कूल गया।
0: अच्छा, छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं छोटा, अभी तो छोटा ही है।
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना
1: हाँ जी।
0: भतीजे के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा, एकदम चिल्ला पड़ती हो जिसको देख के?
1: छिपकली।
0: छिपकली। सही बात है ना?
1: हाँ जी, पर भतीजा नहीं डरता है, छोटा सा है पर वो नहीं डरता।
0: हाँ वो नहीं डरता। अच्छा तो ये तो अच्छी बात है फिर तो। आप जब भी आपको डर लगे ना तो छिपकली या कॉकरोच निकल आए तो आप उसको बुला लीजिए, अपने भतीजे को कहिए कि पहले तुम इसको हटाओ फिर हम खेलेंगे।
1: जी वो तो अपने आप आ जाता है झाड़ू लेके, फिर खुद से मारते हैं कि अब बुआ जी आप कर लो।
0: अच्छा तो बुआ जी ये बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी बेटा फिल्म का गाना सुनना है, खुशियों का दिन आया है।
0: चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, तारीफ
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं सिलाई करती हूँ मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, हसीना जी आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो।
1: नहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं है मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर
0: नहीं लगता
1: निडर
0: छिपकली
1: रहेंगे तो,
0: से?
1: अगर अपने सामने कभी खतरा भी आएगा, निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। छिपकली
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से,
1: से तो बहुत डर लगता है मैडम, हर किसी को
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है,
0: मैं
1: और
0: पूछना
1: महिलाओं को तो अधिकतर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर?
1: सफाई करते ना मैडम, अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो, तो ऐसे दिखाई नहीं देती, मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए
0: हाँ
1: तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाए और इसके पीछे छिपकली हो, है ना, लगता है ना।
1: जी, तो इसके ऐसा करने तो मैडम, झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है, कभी उधर छुप जाती
1: हाँ
0: है ना।
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती है वो।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है ना।
1: जी,
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का?
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम, और गाने के बोल हैं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमका सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे
0: अरे
1: दो। ये सुना
0: आपसे कोई भूल नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली।
1: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
2: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामनी हरवार।
1: अच्छा, तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
2: मैम कुछ नहीं कर, पढ़ाई करती हैं मैम।
1: पढ़ाई करती हैं
2: मैम जी, कक्षा सातवीं में।
1: अच्छा, सेवेंथ में आप, यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी आप टेंथ तक पहुंचने में काफी टाइम है आपको, तो अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको कौन से विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ने में?
2: मैम जी हमें, मैम जी कुछ नहीं, खाना बनाए बहुत मजा आता है।
1: खाना बनाना अच्छा लगता है। तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
2: मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: कौन सी फिल्म का है?
2: सर्वप्रथम मूवी का।
1: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
2: जी मैम।
1: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जालना महाराष्ट्र से। मैं
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सब। अच्छा
1: हमारी सासू माँ है, सस्ते है, मेरी दो बेटियां हैं, प्रियंका
0: अच्छा
1: अंकिता।
0: अच्छा तो बेटियां बड़ी हैं कि छोटी।
1: हमारे घर वाले राजेश तिवारी,
0: अच्छा
1: अभी एक कॉलेज जाते है, एक स्कूल जाते है।
0: अच्छा है ना।
1: नन्हे चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: ओ हेलो, फरमाई सुनते हम
0: अच्छा, और कौन
1: आज
0: कौन
1: के
0: से
1: फनकार।
0: कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है
1: सखी सहेली,
0: या।
1: हेलो सहेली,
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते
1: हाँ बातचीत वाले जा रहा हूँ उसमें।
0: हैं अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह
1: हाँ
0: या इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे
1: हो, कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं।
1: इडली बना दे, हम जा रहे
0: इडली।
1: इडली डोसा।
0: हाँ अरे वाह, इडली डोसा, मतलब ये रहता है ना कि एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है
1: ओ
0: खाने
1: सही
0: में।
1: बात है।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: आरती
0: हाँ
1: सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
4: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
6: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
5: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज,

0: श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के विद्यार्थियों के एक समूह से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्राएं निकाले जा रही हैं। शोभा यात्राओं को देखने और गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। मानु शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य समेत 21 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं दस्तक फिल्म का गीत। आवाज है उदित नारायण की।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित

करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वह दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक

जैसे भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है, जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, गिल्ट की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com।

0: This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग बाय NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान

0: ज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
1: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
0: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया।
1: जी।
0: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
1: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा। लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
1: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
0: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

भले लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ

0: तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: बापू का घर घर पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो अपना देश।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz दे।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: हम सब ने मिलकर ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 6:20 ਤੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में देश में शहर और गांव के बीच अंतर काफी कम हुआ, गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में पंडित दीनदयाल की 110वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को अपने भवन उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ने कल रात्रि से हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना जताई और 10 दिवसीय गणेश उत्सव श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा वडनगर जा रहे यात्रियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख भी किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: आज हरियाणा और चंडीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबाला शहर में सेवा संकल्प अभियान एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर महारक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा समाज के जरूरतमंद लोगों को सशक्त बनाने पर केंद्रित थी।
3: अंत्योदय के प्रोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने समाज के अंदर एक ऐसा विचार देने का काम किया, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पांव में जूती भी हो, पेट में रोटी भी हो, शिक्षा भी हो, चिकित्सा भी हो, उसको मूलभूत सुविधाएं सभी मिले, ये समाज के अंदर ये सबसे पहले किसी ने मूल मंत्र देने का काम किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये फिलोसफी थी।
1: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विचारधारा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा का संगठन भी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर काम कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पर आज पंचकुला के बीर घग्गर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी उनके जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के बारे में विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया गया। इस दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज यहां लोक भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके सार्वजनिक जीवन में योगदान को स्मरण करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनके अंत्योदय के विचार का गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों का उत्थान एवं कल्याण सुनिश्चित करना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज पानीपत में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और पानीपत की महापौर कोमल सैनी ने शहर में 3100 पौधे लगाए। इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जन सेवा के कार्यों से जुड़ने का संदेश दिया गया। डॉ. अर्चना गुप्ता ने बताया

0: कि 2 अक्टूबर को चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र से करीब 3,000 लोगों को जोड़ा जाएगा। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर अपने भवन उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण शीघ्र करवाया जाए, इसके लिए सरकारी भूमि, विद्यालयों में उपलब्ध भूमि तथा अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की संभावनाएं तलाशें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किराए के भवनों में हो रहा है, उनके लिए भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के साथ साथ विद्यालय परिसरों में उपलब्ध भूमि तथा ऐसी धर्मशालाओं की भी पहचान की जाए जहां आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। पलवल अनाज मंडी में अभी तक 19,827 क्विंटल धान की आवक हुई है। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष पंकज विरमानी ने बताया कि धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है।
1: मंडी के अंदर गेट पास आज से स्टार्ट हो चुके हैं। किसानों से मैं अपील करता हूं कि अपनी फसल को सुखा के लाएं। सरकार ने भी खरीद स्टार्ट कर दिया और हमारे यहाँ पे आरती भाई भी बाहर से भी आए हुए हैं, उनकी भी खरीद स्टार्ट हो चुकी है।
0: मंडी में धान की फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल कीचड़ ने कहा है कि हरियाणा में कल रात्रि से मौसम में बदलाव हो सकता है। 27 और 28 सितंबर को उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं हल्की बारिश व पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है।
2: कल हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में से मानसून की वापसी हो गई है। जो पहले हवाएं पश्चिमी चल रही थी, अभी पूर्वाई हुई है, एक पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना बन रही है और उसके कारण हरियाणा में 26 सितंबर रात्रि से फिर से मौसम में एक बार बदलाव देखने को मिलने की संभावना है। 27 और 28 सितंबर के आसपास हरियाणा में, खासकर उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है।
0: उन्होंने किसानों को बारिश के बाद नमी को संचित करने की सलाह दी है।
2: किसान भाइयों को यही सलाह है, जहां जहां क्षेत्र में बारिश हुई नमी को संचित करें और 25 सितंबर के बाद में एक और छोटा सा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके बाद में मौसम साफ हो जाने पर खासतौर पर सरसों की बिजाई शुरू करें। सुबह और शाम थोड़ी ठंड और उसके कारण नरमा कपास की चुनाई सूर्य निकलने के बाद में ही करें।
0: उन्होंने कहा कि सब्जियों और फलदार पौधों में यदि कहीं पानी की आवश्यकता हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। पानीपत और फरीदाबाद में भगवान गणेश का 10 दिवसीय गणेश उत्सव पानीपत में श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक आस्था के साथ संपन्न हुआ। पानीपत जिले में 2,000 से अधिक स्थानों पर गणपति की प्रतिमाएं विसर्जित की। इसी तरह फरीदाबाद में करीब 50 स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई देते हुए उनके अगले वर्ष आने की कामना की। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिलों के लिए अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि इसमें छात्रों को राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पोर्टल पुनः खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं छात्रों के निरंतर अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हांसी में हिसार जल सेवाएं मंडल के जिलेदार राजेश कुमार को 3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से गांव में राजगढ़ चंडीगढ़ मुख्य मार्ग के नजदीक काटी गई कॉलोनी की कृषि भूमि के लिए नहरी पानी की सिंचाई व्यवस्था से संबंधित COO बनाने के लिए 3,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी।

मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में देश में शहर और गांव के बीच अंतर काफी कम हुआ। गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में पंडित दीनदयाल की 110वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय कानून ते न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब विच वध रहे नशियां दे संकट नूं लै के चिंता जाहिर की थी। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब स्टेट रेड क्रॉस वालों हड़ प्रभावित नेपाल लई राहत समगरी की तीजी और सब तो वड्डी खेप नूं हरी झंडी दे के रवाना किया। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा है कि पंजाब की खेती नूं टिकाऊ बनाने लई फसली भिन्नता समय की मुख लोड़ है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जलंधर स्थित एक प्राइवेट पासपोर्ट एजेंट नूं पासपोर्ट जल्दी जारी कराने बदले 20,000 रुपये रिश्वत लैंदे रंगे हत्थी काबू किया है। भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने अज एशियाई खेडों में 100 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब विच वध रहे नशियां दे संकट नूं लै के चिंता जाहिर की थी। मीडिया नाल गलबात करदिया भारतीय जनता पार्टी वालों शुरू किए गए नशा मुक्त पंजाब अभियान नूं समाजिक सुधार का कारज दसदिया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जदों पूरा देश विकसित भारत के अहद नाल अगे वध रहा है तो इस दृष्टिकोण विच पंजाब का भी पूरी तरह विकसित होना बेहद जरूरी है।
1: पंजाब को भी बचाना है, पंजाब की भावी पीढ़ी को भी बचाना। नशे की प्रवृत्ति के कारण युवा परेशान है, इसलिए ये जो प्रोग्राम है नशा मुक्त पंजाब का, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है। पंजाब को नशा मुक्त करने का कार्यक्रम है, जिससे पंजाब वापस विकसित पंजाब बने।
0: मौजूदा शासन प्रबंध ते तिखा हमला करदिया केंद्रीय मंत्री ने इल्जाम लाया कि प्रशासन आते सिस्टम विच बैठे कुछ लोग नशियां दे काले कारोबार विच शामिल ने। उन्हां कहा कि नशा खत्म होने की बजाय होर भी पैर पसार चुके है। उन्हां भी कहा कि खुलेआम नशा बेचण वाले खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय नशा तस्करी विरुद्ध आवाज उठाने वाले नूं ही निशाना बनाया जा रहा है। इस मिली भुगत कारण सूबे विच भ्रिष्टाचार भी वध्या है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब नूं मुड़ खुशहाल अते विकसित बनाउण लई नशियां दे इस जाल नूं पूरी ताकत नाल तोड़ना होगा। कहा कि भाजपा पंजाब के लोगों के नाल रल के इस समाजिक बुराई के खात्मे तक अपनी मुहिम जारी रखेगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी वालों पंजाब नूं नशा मुक्त करने के उद्देश्य नाल कढ़ी जा रही नशा मुक्त यात्रा अज होशियारपुर पहुंची। यात्रा नूं शहर विच वख-वख थावां ते लोकां वल्लों भरवां हुंगारा मिलिया। इस मौके जनसभा नूं संबोधन करदिआं भाजपा दे कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि भाजपा पंजाब विच नशे दे खात्मे लई पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्हां कहा कि नशा मुक्त यात्रा पंजाब दे हर कोने ते हर पिंड शहर तक पहुंच के लोकां नूं नशे दे खिलाफ इकजुट कर रही है। तरुण चुग ने कहा कि नशे दे कारोबार नाल जुड़े पैसे दे नेटवर्क नूं खत्म करन दे नाल नाल नशे दी लत विच फसे नौजवानां दे मुड़ वसेबे ते भी ध्यान दित्ता जाएगा। इस मौके साबका केंद्रीय राज मंत्री अते साबका संसद मैंबर विजय सांपला अते साबका संसद मैंबर अविनाश राय खन्ना समेत भाजपा दे होर आगू मौजूद रहे। उधर भाजपा सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने अज लुधियाणा विच नशा प्रभावित परिवारां नाल मुलाकात कीती। इस मौके पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्हां कहा कि सूबा सरकार नशा तस्करी नूं रोकण विच असफल रही है। श्री ढिल्लों ने कहा कि नशे कारण अपने पुत्रां नूं गवाउण वालियां मावां दा दर्द असह है। उन्हां इह वी कहा कि असीं राजनीति नहीं सगों लोकां दे असल मुद्दे उठा रहे हां।
2: ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
0: उन्होंने भी कहा कि जनता सूबा सरकार नूं ढुकवां जवाब देगी। भाजपा जिला प्रधान सुनील मोदकिल भी इस समागम विच मौजूद सन। पंजाब स्टेट रेड क्रॉस ने अज मनुखी अधिकार ते हड़ प्रभावित नेपाल लई राहत समगरी दी अपनी तीजी अते सब तो वड्डी खेप भेजी। पंजाब दे राज्यपाल अते स्टेट रेड क्रॉस दे मुखी श्री गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ दे पंजाब लोक भवन तो करीब 52 टन जरूरी राहत समगरी लैके जाण वाले 7 वड्डे ट्रकां नूं हरी झंडी दे के रवाना कीता। श्री कटारिया ने कहा कि समगरी नेपाल रेड क्रॉस सोसायटी वल्लों सांझी कीती गई लोड़ सूची मुताबक खरीदी गई।

0: ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਦੀ।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किमे फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किमे संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: श्रोतियों, प्रोग्राम जयमाला लई करो बस थोड़ा जिहा इंतजार।

0: लीजिए सुनिए फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। सभी फौजी साथियों को प्रीति शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह देशभक्ति गीत के साथ, इसे हमने लिया है फिल्म देश प्रेमी से। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खन

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कार्यक्रम का अगला गाना हेमलता की आवाज में है, फिल्म का नाम है फकीरा, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आइए अब सुनते हैं द जेंटलमैन फिल्म का गाना। SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में, गीत इंदिवर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: फौजी साथियों, आइए सुनते हैं हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गाना, गीत महबूब का है, संगीत इस्माइल दरबार का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गीत देव कोहली का है, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
6: आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और अनु मलिक की आवाजों में फिल्म मर्द का गाना। गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, संगीत अनु मलिक का है।

no, sorry, G. No, no, sorry.

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: फौजी साथियों, अब जयमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद।

0: गुजरात का बादशाह मुजफ्फर शाह था, उसके हुक्म से मुबारिजुल मुल्क ईडर का सूबेदार होकर आया था। मुजाबिरजुल मुल्क नहायत तंदुरुस्त इंसान था, वो ऊंचा था और उसका सीना फैला हुआ था, दाढ़ी चौड़ी और मूछें खमदार। ईडर का किला पहाड़ियों से घिरा हुआ था, उसके चारों तरफ गहरी खाई खुदी हुई थी। किले तक पहुंचना किसी साधारण आदमी का काम नहीं था। किले को जाने वाली सड़क टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी थी। किले पर हमला करना एक नामुमकिन सा काम था और मुबारिजुल मुल्क इस किले का रक्षक होकर आया था। वो घमंडी और जिद्दी आदमी था। उसने प्रशासन की ओर ध्यान देने के बजाय अपने व्यक्तिगत ऐश की ओर अधिक ध्यान दिया।
1: वो देख रहे हैं मुझे चाहत की नजर,
0: और दिन रात ऐश और इशरत में डूबा रहता था। अपने दरबार में भी बस वो इसी प्रकार की बातें अधिक पसंद करता था।
1: नहीं क्यों, दिल और भी बेताब है मालूम नहीं क्यों।
2: हुजूर आला, गुस्ताखी माफ हो, गुजरात के बादशाह मुजफ्फर शाह ने तो आपको ईदर का मुहाफिज बनाकर भेजा है। गरीब परवर, उसकी हिफाजत आपका फर्ज अव्वलीन है। सुना है आजकल राणा संग्राम की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त उनकी बहादुरी का मुकाबला शायद ही कोई कर सके।
3: बकवास बंद करो, मैं अपने दुश्मन की तारीफ सुनने का आदी नहीं हूँ। मेरे बादशाह मुजफ्फर शाह और राणा संग्राम का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस दरबार में शाह गुजरात के अलावा और किसी की तारीफ न की जाए।
2: इज्जत माप दस्त बस्ता, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैंने उस बहादुर जंगजू को अपनी आंखों से देखा है। उसका नेजा पत्थर को शक कर देता है, उसकी तलवार ढाल के दो टुकड़े कर देती है। उसकी जंग इज्जत और विकार के लिए होती है। जिंदगी की हर सांस वो अपनी इज्जत पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।
3: बदतमीज, बादब दरबारी ज्यादा बहस नहीं करते, इसी वक्त हमारे सामने एक कुत्ता पेश किया जाए। हम उस कुत्ते का नाम राणा सांगा रखेंगे। फिर उस कुत्ते को फाटक पर ले जाकर बांध दो और राणा सांगा को बता दो कि अगर उसमें बहादुरी और जौमर्दी के जौहर हैं तो आकर उस कुत्ते को आजाद कर ले।
0: जमा खान लोधी दरबार का मुअज्जज शख्स था और मुआरिजुल मुल्क का साला भी। उसने खड़े होकर कहा,
4: आला हजरत को गुस्से में फैसला करने के पहले हर बात अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए।
3: जमा खां, हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, लेकिन इस मामले में हम जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं। राणा सांगा में इतनी हिम्मत नहीं वो ईडर पर हमला कर सके।
0: राणा संग्राम सिंह को इसकी खबर पहुंच गई। वो अपनी सेना लेकर ईडर की ओर बढ़ा। उसकी खबर पाते ही ईडर में हलचल मच गई। फौजी मुबारिजुल मुल्क को बुरा भला कहने लगे,
5: क्या हमारा सूबेदार पागल हो गया है, सोए हुए शेर को जबरदस्ती छेड़ रहा है।
6: अब तो हमारा खुदा ही हाफिज है, राणा सांगा अपना बदला चुन चुन कर लेगा और सारे शहर पर मुसीबत नाजिल हो जाएगी।
5: और क्या भाई, ऐसा क्यों ना किया जाए, सारी खबर गुजरात के शाह को भेज दी जाए।
6: ठीक है, ये सारी खबर खुफिया तौर से गुजरात के शाह को आज भेज दी जाए।
5: जरूर,
6: बिल्कुल।
0: राणा सांगा के हमले की खबर सुनकर मुबारिजुल मुल्क घबरा गया और शाह गुजरात से मदद मांगने खुद ही गुजरात जा पहुंचा।

0: अर्ज करने लगा,
1: जिल्ले सुभानी आलम पना, इस वक्त राणा सांगा एक बड़ा लश्कर लेकर ईडर पर हमला करने आ रहा है। ईडर की हिफाजत के लिए मुझे एक जर्रा लश्कर की जरूरत है। बगैर आला हजरत की मदद के ईडर बचाया नहीं जा सकता।
2: हमें सारा इल्म हो चुका है, तुम किसी कसम की मदद के मुस्तहिक नहीं हो।
1: जी
2: तुमने एक बाइज्जत शख्स की इज्जत पर कीचड़ उछाला है, इसका खमियाजा खुद ही भुगतो। या तो इसका मुकाबला करो या भाग जाओ।
1: जी हजरत,
2: ये जंग हमारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारी इस हरकत पर अगर राणा खामोश हो जाते तो हम उन्हें एक बुजदिल इंसान समझकर खुद ही मेवाड़ पर हमलावर होते।
1: जी
2: उन्होंने वही किया जो एक बहादुर और बाइज्जत इंसान के शान शाया है।
0: मुबारिजुल मुल्क ईडर वापस आ गया और घबराकर अहमदनगर भागने की तैयारी करने लगा। उसकी घबराहट देखकर उसकी बीबी रजिया, जो जमा खान लोदी की बहन भी थी, बोली,
3: अगर तुमने जमा खान की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता।
1: जब मुजफ्फर शाह ने ही मदद देने से इनकार कर दिया तो मैं इन थोड़े से सिपाहियों के साथ क्या कर सकता हूँ।
3: तुमने अपनी बेइज्जती के बारे में सोचा है? तुम्हारी इस बुजदिली की वजह से राणा इस कुत्ते को रिहा कर देगा। इस बेइज्जती से तो मौत बदर जहां बेहतर है। जब दुश्मन को ललकारा है तो उसका मुकाबला करो।
1: ये नामुमकिन है, फौज बदल हो चुकी है, कोई जंग के लिए आमादा नहीं है। सिर्फ मैं ही क्यों अपनी जान दूं?
3: अब ये बात सोचने का वक्त नहीं है। इस कुत्ते की मुहाफजत करो, फतेह या शिकस्त रब्बुल आलमीन के हाथ है।
1: मेरे पास इतनी ताकत नहीं, मैदान जंग में राणा का मुकाबला इतनी आसान बात नहीं है।
3: राणा इतनी आसानी से कुत्ते को आजाद न कर सकेगा।
1: मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा रजिया।
3: मैं वही कह रही हूँ जो एक बाइज्जत औरत को कहना चाहिए। तुम शाहे गुजरात की पनाह में आराम कर सकते हो, मैं ईदर की बहादुर फौजों के साथ इस इज्जत की हिफाजत करूंगी जिसे तुमने ही कायम किया है।
1: रजिया,
0: मुबारिजुल मुल्क अहमद नगर की तरफ भाग गया और रजिया सिर्फ 100 सिपाहियों को लेकर मैदान जंग में राणा का मुकाबला करने पहुंची। उस छोटी सी टुकड़ी को देखकर राणा ने कहा,
4: तुम लोग क्यों व्यर्थ अपनी जाने देने आए हो?
5: हमें शहादत की तमन्ना है।
4: अगर मेरी इच्छा ईडर पर विजय प्राप्त करने की होती तो संभवतः मैं इसी समय लौट जाता, किंतु फाटक पर मुबारिजुल मुल्क ने जो कुत्ता बांध रखा है उसे मैं अवश्य छुड़ाऊंगा।
0: मौत ने अपने जालिम पंजे फैला दिए, जंग शुरू हो गई। तलवारें में आंख निकल आई। रजिया के सिपाही इकबाल दीगरे बहादुरी से लड़ते हुए परवानों की तरह निसार होने लगे और उसी वक्त रजिया का एक सिपाही तेजी से फाटक की तरफ भागा और दूसरे सिपाही ने चिल्लाकर कहा,
5: जमा खान, क्या अपनी शुजात पर दाग लगाना चाहते हो?
6: हम सिर्फ 5 ही बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि राणा अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके।
5: ठीक है,
6: खबरदार, कुत्ते की तरफ कोई न बढ़ना, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा।
0: जमा खान ने अपना नेजा कुत्ते को मारने के लिए बढ़ाया और उसी वक्त एक राजपूत सिपाही ने खंजर फेंक कर जमा खान को मारा। नेजा जमा खान के हाथ से गिरा। जमा खान तलवार खींचकर घोड़े से कूदा और उसी वक्त कोई राजपूत सिपाही बीच में आ गया और जमा खान का मकसद पूरा ना हो सका। ठीक इसी वक्त एक अनजान सिपाही उछलकर वहां पहुंच गया। उसने घोड़े से पैर से कुत्ते को दबा दिया

0: और तलवार के एक ही वार से कुत्ते के दो टुकड़े कर दिए। ये दृश्य देख अनगिनत तलवारें और नेजे जमा खां और उस अनजान सिपाही की जिर्फ में उतर गए। राजपूत सिपाही पागल से हो गए।
1: राजपूत किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते।
2: रजिया बहन, ये तुमने क्या किया? बहन क्या किया? इस खुदकुशी की क्या जरूरत थी?
3: खुदकुशी नहीं, शहादत है। अपने

0: शोहर की आहन की खातिर इज्जत और विकार बचाने के लिए।
1: और जंग खत्म हुई। ईडर पर राणा सांगा का कब्जा हो गया, लेकिन राणा एक मंजर देखकर बुत बनकर खड़ा रह गया। उस अनजान सिपाही की लाश किसी मर्द की नहीं बल्कि एक बहादुर औरत रजिया की थी, जिसने इज्जत और विकार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसका असर राणा के दिल पर बहुत गहरा पड़ा। उसका हृदय विचलित हो उठा। उस बहादुर औरत की लाश को वे एक तक देखते रहे और न जाने क्या क्या सोचते रहे। मान और अपमान दोनों ही मर चुके थे। इसी समय किसी के गाने की आवाज दूर से सुनाई दी।

मान की मृत्यु, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने डॉक्टर शमसुद्दीन द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म डिशुम से। इसे गाया है जोनीता गांधी और अमित मिश्रा ने। गीत कुमार और आशीष पंडित का है, संगीत प्रीतम का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न

0: विद भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुनते हैं एक विलन रिटर्न फिल्म का गाना राघव चैतन्य की आवाज में, गीत कुणाल वर्मा का है, संगीत कौशिक गुड्डू का

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
0: कार्यक्रम का अगला गाना विशाल दादानी की आवाज में है। फिल्म का नाम है तलाश, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत राम संपत का।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष

0: टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
3: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र

0: सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का

0: स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों के साथ। फिल्म का नाम है गर्म खून, गीत सिंगार का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में नजराना फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
4: इससे पहले

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लैला मजनू फिल्म का गाना। गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने, संगीत मदन मोहन का है।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मनहर उदास की आवाजों में होटल फिल्म का गाना। इसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत उषा खन्ना का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
4: फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
5: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता। बहुत प्यार

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना अपना जो सपना।

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बाल सुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे एसपी बाल सुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बाल सुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका यह जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एसपी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले

एसपी बाल सुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बाल सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बाल सुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये

0: प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।
1: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। वक्त की आंधियों में जलती रही है मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की कली खिलती रही है। पास आओ या दूर ही रहो पूछो मेरे दिल से क्या चाहते मेरी हैं क्या मिलती रही हैं। कभी मेरी नजरों से तुम खुद को देख

तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम, ओ सनम मैं तेरा आशिक जावदा, ओ सनम, ओ सनम।

वो इश्क ही क्या जो परवान न चढ़े, वो घटा ही क्या जो आसमान न चढ़े, बीते सदियां बीते जमाना लेकिन वो हुस्न ही क्या जो किसी का अरमान न बने। तुम मुझे भूल भी जाओ मगर हम याद रखेंगे, छोड़ देंगे दुनिया अगर मेरा इश्क ही मेरी पहचान न बने।

तन्हाई के इस घड़ी में मेरा कोई नहीं है। याद आते हो तुम बेसबब आज मुझे इस तरह। भटकता फिर रहा हूँ इस अनजान शहर में, डेरा कोई नहीं है। पुकारता हूँ तेरे नाम को बस एक ही आसरा, तेरे सिवाय जमाने में मेरा कोई नहीं है।

आप सुन रहे हैं छाया की। यूं तो देखा नहीं है पहले कभी, पर लगता कोई गहरा नाता है। एक झलक में कोई कहां दिल को इतना भाता है।

कोई बात जरूर तेरी आंखों के चमकने, तेरी एक नजर से रोशन दिल मेरा हुआ जाता है। फेर के नजर यूं ना जाओ मुझसे दूर, इस बात से ही दिल मेरा घबराता बहुत है।

मिले थे तुमसे न जाने कब पहली बार, यकीन यही है कि हो गया था तब भी तुमसे प्यार। दिन तेरे बिन जो बीते वो क्या खाक दिन थे, अब तुम जो मिले हो तो आया दिल को भी करार। कहता ना था मैं तुमसे कि हम पहले भी मिले हैं, न जाने कितने जन्म में, न जाने कब और कितने।

0: आखिर मिल ही गए दिल हमारे, तेरी नजरों में ही चांद की रंगत को निहारें। क्या जिंदगानी थी और अब क्या होने लगी है, मेरी चाहत तेरी बाहों में अब खोने लगी है। मुझको तो पहले से मोहब्बत रही तुमसे, अब थोड़ी थोड़ी तुमको भी खोने लगी है।
1: जन्नम

0: छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। इस वेले रात दे 10:30 हो चुके ने। हुण पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालां विच देश विच शहरां अते पिंडां विचकार पाड़ा काफ़ी घट गया अते पिंडां विच बुनियादी ढांचे विच सुधार होया। हरियाणा अते चंडीगढ़ विच पंडित दीनदयाल उपाध्याय नूं अज उहनां दी 110वीं जन्म वरेगंढ याद किया गया। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नूं श्रद्धांजलि भेंट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों नूं किराए ते लए आंगनवाड़ी केंद्रां नूं उन्हां दीआं अपनीआं इमारतां प्रदान करन दे काम विच तेजी लियाउण दे निर्देश दित्ते। चौधरी चरण सिंह हरियाणा खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के एक मौसम विज्ञानी ने कल रात तो हरियाणा विच हल्की बारिश की भविखबाणी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किशोर न्याय फंड नूं वधा के 10 करोड़ करन दे निर्देश दित्ते। 10 दिना गणेश उत्सव अज श्रद्धा और धार्मिक आस्था विचाले गणेश मूर्तियां दे विसर्जन नाल संपन्न हो गया। डेयरी सैक्टर नूं जलवायु परिवर्तन दीआं चुनौतियां तों बचाउण अते खेत तों प्लेट तक फूड वैल्यू चेन नूं टिकाऊ बनाउण दे उद्देश नाल अज करनाल दे राष्ट्रीय डेयरी खोज संस्थान विच 13वां राष्ट्रीय सैमीनार शुरू होया। हरियाणा के बागवानी किसानों नूं फलां अते सब्जियां विच कीटनाशकां दे रहिंद खून दे विश्लेषण लई मुफ्त जांच सहूलतां प्रदान कीतियां जाणगियां। इह सन हुण तक दीआं मुख प्रादेशिक खबरां।
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है।

0: एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
0: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: हुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। प्रोग्राम सुरसांझ लेके हाजिर है तुहाडी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा। मेरी प्यार भरी नमस्कार श्रोतिया, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं सुरजीत पुल्लर ते सुदेश कुमारी दे गाए गीत नाल।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।